0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो ले।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 आवाज ओ पिता जाई पिता
1: से बैंक रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे एफएम केटीएन न्यूज़।

جنگ خات میں لائے تم چاہے روی 5 سال کی درخواست

0: आपको आप देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أولئك الذين لعنهم الله، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، ومن يلعن الله، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، تم ہرگز اس کا کوئی دوست نہ پاؤ گے، پھر اس کو کوئی مددگار نہ ملے گا، نہ اللہ کی مدد اور نہ بندوں کی مدد۔ آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے دراصل ان کی خواہشات نفس تھیں، ان کے دنیاوی مفادات تھے۔ تو جو شخص خواہشات نفس کا شکار ہوتا ہے، دنیا کی محبت رکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ کعب بن اشرف کیا خدا کو نہیں مانتا تھا؟ کیا عبادت نہیں کرتا تھا؟ لیکن جب اس کے دل پر دنیا کی محبت چھا گئی تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے ملاپ کرنا چاہا، الحاق کرنا چاہا۔

ਪਲ ਵਿਸਾਲ ਤੁਜੋ ਪਲ ਵਿਸਾਲ ਤੁਜੋ ਪਲ ਵਿਸਾਲ

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
5: They're fully agreed, no nuclear, they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it.
6: 20 years is not enough for you, it's got to be a
5: problem. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is, in other words, it's got to be a real 20 years, not a big
6: thing. You've got to get all the fuel out and no more production.
5: We have to get everything, but we're not even talking about going to nuclear guns. Came up with a terrible issue to go on.
6: I'm not talking about because they would not remove the...
5: They said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it. Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective, that's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister.
7: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां जगबंदी वारो फैसलो पाकिस्तान जे चवण ते हिकु फेवर तौर कयो। ईरानी तजवीज़ मुकमल तौर ते क़बूल। 10 सालनि ताईं एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करण वारी तजवीज़ सुठी आहे। यूरेनियम जे रचाव बाबति लेवल जी ज़मानत तसली जोगी न आहे। आबनाए हुरमज़ बाबति कंहिंजी मदद ज़रूरत न आहे। नई चीनी सदर खे कंहिं मदद बाबति चयो आहे। कुझु ॾींहनि में ईरान खां तेल वठंदड़ चीनी कम पियो वेंदो। ताइवान बाबति अमरीकी पॉलिसी तब्दील न आहे थी। ताइवान खे हथियार ॾियण जी मंज़ूरी नाहे ॾिनी। थी सघे थो त मंज़ूरी ॾियां या न बढ़िया। चीन सां तारीख़ी वापारी मुआदा थिया आहिनि जंहिंजो अमरीका खे फ़ाइदो थींदो। पाकिस्तान जे टाकरे में अमरीका सां ॻाल्हियूं नाकाम नाहिनि थियूं। मुश्किल मरहले मां गुज़री रहियो आहिनि। जंग जी शुरूआत बि ईरान ई न कई हुई, रुगो पंहिंजो दिफ़ा कयो। जंग बंदी बरकरार रखण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। आबन हुरमज़ में रिनकनि जी ज़िमेवार बि ईरान नाहे। नई दिल्लीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परडेही वज़ीर पासे रखी चयो त असां वटि अमरीका ते तबाह करण जो बि को जवाज़ नाहे। मुआदे खां पहिरियां सभु शयूं वाज़े थियण घुर्जनि। चीन असांजो स्ट्रेटेजिक भाईवार आहे। अमरीका सां गाॾियुनि में यूरेनियम जो रचाव डेढ लाख जो शिकार आहे। आबन हुरमज़ अमरीकी जहाज जे मुकमल खात्मे बाद ई खुली सघंदो। आबन हुरमज़ हिन वक़्त जंग में मुलस मलिन खां सवाइ ॿियनि लाइ खुलियल आहे। ताक़त जो इस्तेमाल नतीजा न ॾींदो। ईरान जे एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि तकरारनि जो हल मुशावरत सां निकरण घुर्जे। मसइले जे हल तकिड़ो हल अमरीका ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मफ़ाद में आहे। जेडी परडेही वज़ारत चयो आहे त तकरार जे निबेरे लाइ ॻाल्हि ॾिसो जल्दी। ईरान जंग शुरू ई न थियण घुर्जे। सफारतकारी खे हथी ॾिनी आहे। आबन हुरमज़ अमरीकी जहाज जे मुकमल खात्मे बाद मेजर जनरल अमीर हारमी चयो आहे त रत जे आख़िरी फुड़े ताईं ईरान सलामती ऐं आज़ादी जो दिफ़ा कयो वेंदो। ईरान वटि जदीद ज़मीनी ऐं फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मौजूदु आहे। मसइले जे हल तकिड़ो हल अमरीका ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मफ़ाद में आहे।

0: ईरान जंग शुरू ई न थियण घुर्जे। हा जेका जंग जो जाहिराण कंहिंजे मफ़ाद में न हूंदो। सरबराह जो एतिराफ़ आई एस दिलत चयो आहे त बरतानवी अशियाती इदारे खे इंटरव्यू ॾींदे पाकिस्तान खे तनाई में धिकण जी कहाणी पुराणी थी चुकी। पाकिस्तान कॾहिं न टुटंदो। पाकिस्तान हाणे ईरान ऐं अमरीका जंग में टाकड़ो करे रहियो आहे। उहो किरदार भारत खे अदा करणु घुर्जे। हा पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली लाद। पेट्रोल ऐं डीज़ल फी लीटर 5-5 रुपया सस्तो। क़ीमतुनि में लाद बाद पेट्रोल जी नई क़ीमत 409.78 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 409.58 रुपया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
4: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। Then I realized I was made for music.
2: जब तक मैं जिंदा हूँ तुम वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: 91.6 सिंध जो आबाद हो.
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: रिश्ता भरोसे का.
3: अब FM नेटवर्क पर TN न्यूज़.

ऐं मीरपुर माथेरो भरिसां शेख ज़रीन में संगापी तकरार सां झेड़ो अठ ॼणा ज़ख़्मी ॻोठ वागड़ी में झिड़ी दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सां ॿिनि ॼणनि जा अठ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया इस्पताल मुंतकिल कया विया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वयो।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Subah ki chai ya traffic ka jam. Har pal fun GFM badalti life ki tragedy.
5: Yeah.

0: सिया है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुंगर था भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 12 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: कर रहा है। यो किरदार भारत की अदा करण घुर्जे हा।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तुम खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: ऐ इश्क जुनू, देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
4: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
5: This program is brought to you by
6: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream.

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन दिया है, तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है। ही पेगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
4: आप सुन रहे हैं।
5: DAFM 88
4: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network सिंध की आवाज
3: It's 1 PM This time check is brought to you by
4: Michael Habib रिश्ता भरोसे का
5: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News
6: पिन की जांच दौरान पुलिस ते जांच दौरान तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम लगायो पिन की जजा जो बयान नो तो सब कुछ अगूनो मुड़स कराए रहो है मुख्य 22 दिन अगू खयो हो मुते तशद्दुद करे चाहिए तो सब कुछ कबूल कर तो तुझे कुटुंब के भी खणंदासीं

आई एम एफ बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। एफ बी आर जो टैक्स हदफ अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। पंहिंजा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1727। मोहसिन नकवी ऐं मुमलिकती वज़ीर तलाल चौधरी सां मिस्री वफ़द जी मुलाक़ात बि तरफ़नि लाॻापनि समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू अदालतनि विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मोहसिन नकवी चयो त मिस्री वफ़द जो दौरो ॿितरफ़े सहकार जा नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो।

सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻियल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजील इनाम वेमण चयो आहे त वापारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे। पीसीबी चेयरमैन

सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻियल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान मार्केट मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजील इनाम वेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं आवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि आवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे। पीसीबी चयो निशानी थी रही आहे, बासर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे खोलाए वञे। मीरपुर माथे बिरादरी जी तकरार ॻोठ वाघणीअ में जहिड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि ॿिन्ही धुरियुनि जा 8 ॼणा ज़ख़्मी थिया। बंगलादेश ऐं पाकिस्तान में ॿी टेस्ट मैच जो पहिरियों ॾींहुं बैटिंग जारी। क़ौमी बॉलर्स बंगलादेश जूं अहम विकेट वठणु

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे।

बने गए। तो यहाँ पर आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक आप लोगों से पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग जो है ना वो कुछ लोग तो स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कई मरतबा आप अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से फंस भी जाते हैं, बहुत जगहों पर ऐसा सीन हो जाता है। आप फिर ये बोलते हैं कि भाई काश मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आज आप मुझे ये बताने वाले हैं क्या आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में कहीं पर फंस गए हैं, और फंसे हैं तो कैसे बाहर निकले उस सिचुएशन से। बिल्कुल जी, ये आज आप मुझे बताएंगे। ये बहुत सारी ऐसी बातें होती जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, और साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं शो के अंदर, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर हमारी पोस्ट आपको मिलती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। जल्दी जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मेंशन कीजिए और उनको भी बताइए कि वो भी खूबसूरत बन सकते हैं भाई जान। तो आप भी खूबसूरत बनिए, खूबसूरती की दुनिया में आपको वेलकम एंड खुश आमदीद। और साथ ही साथ आज आप मुझे बता रहे हैं कि आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में फंस गए हैं, और फंसे हैं तो फिर बताएं सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है आज, आप टॉपिक के ऊपर बात कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी। और ये तो हर किसी ने ट्राई किया होगा, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो हर कोई कर रहा होता है। ओके जी, इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं बिल्कुल जी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि भाई आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को बताने के लिए प्रोडक्ट्स हैं जनाब, जिनमें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी वाला फेस वॉश है। और उसके साथ साथ अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज का। और अगर आप जो है वो साबुन लगाने वाले लोग हैं, साबुन लगाते हैं, तो भाई व्हाइट एज का सो भी मौजूद है, सो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गर्मियों में कोई लाइट वेटेड फार्मूला चाहते हैं, लाइट वेटेड क्रीम चाहते हैं जो कि भाई आप लोगों को मेकअप से भी बचाए और आपकी खूबसूरती को भी बहाल रखे, तो उसके लिए व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है। और व्हाइट एज की लवली क्रीम के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है, और उसके अलावा डॉक्टर पिम्पल का एक्नी क्लियर ट्यूब भी मिल रहा है। और डॉक्टर पिम्पल का एंटी एक्नी ये क्रीम जो है, एंटी एक्नी क्रीम आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार होता है उन लोगों के लिए, खास वो लोग जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आते हैं, एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं, तो भाई आपने डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब इस्तेमाल करना है जो कि व्हाइट एज वालों का है, ठीक है। और इसी के साथ साथ लोशन भी मौजूद है इनका, और हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है, बहुत सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरती को बढ़ाते हैं और हमेशा खूबसूरत रहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपकी सिटी में मिलनी चाहिए जाहिर सी बात है, तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595। बिल्कुल जी, 03-15-799-0595 ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइए ये तमाम प्रोडक्ट। ओके जी, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है आप काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर बहुत ज्यादा कर दिया करें, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी जल्दी से। और इसके अलावा अनवर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं उस्ताद बुखारी की शायरी, उम्मीदों आसरा पलिया को न हुंदई, करे याद घोड़ा झलिया को न हुंदई, जमानो घणोई रुलियो तू भी हुंदे, असां जिहड़ा माणो मिलिया को न हुंदई। वाह वाह, वेरी नाइस। और आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, वक्त वालों को तो मयसर हो, हम कम वक्त अब किधर जाए, बस आप यहीं बैठी रहिए हमारी पोस्ट पर। यूनिस खोड़ो हमें सुन रहे हैं, यूनिस खोड़ो वालेकुम अस्सलाम, आप हमें दौलत गोट से सुन रहे हैं, वेलकम जी। अहमद आलार हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम। इमरान अली उज्जैन भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी। अनवर भाई बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगाएंगे, लेकिन ये बात है कि मुझे जरा सिंगर का नाम जो है ना वो मेंशन कीजिए, मुझे नहीं पता ये गाना मैं सर्च करूंगी तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और नूरी सिंह भाई भी हमारे साथ मौजूद है, फ्रॉम लाड़काना अदी सिद्रा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपने दुआएं दे दी है मुझे। और उसके अलावा है जी मोहम्मद जमान, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, सो आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक, हम बचपन से स्मार्ट हैं तो ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम आप बचपन से करते हो उसमें कभी धोखा नहीं खाते। ये तो है वैसे, हाँ वैसे आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे चलें, लेकिन आज बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं ना जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बनके मोहब्बत का साज पास।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए आपके चेहरे की स्किन को ग्लोइंग करता है और साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो है ना एक अच्छा और फ्रेश सा लुक भी देता है। इसके अलावा व्हाइट एज का साबुन भी मौजूद है, सो भी आए बाबा। अगर तुम्हें साबुन लगाई ना था, तुम्हें साबुन लगाए सको था व्हाइट एज जो एलोवेरा एवोकाडो से तैयार थे है, तो तुम्हारी खूबसूरती जगह वो हमेशा बरकरार रहने वाली है। तुम्हारी स्किन फ्रेश रहती, फेयर रहती, प्रोटेक्ट होती जनाब हर साइड इफेक्ट का। तो तुम्हें बस आनी इस्तेमाल कर सको था, कितना भी बनी बस आनी वी सको था। अगर तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना है, तुम्हारे नंबर आए जनाब जो तुम डायल करी पाँच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था। नंबर आए 03157990595। उन अलावा जी मानू असा सखर में बुधन पाया दिलशाह जनरल स्टोर आए गरीबाबाद में, तुम सखर वही वी सो था। बीड़ी मजेदार गाल जी अक्सर मानू मुखा पुछन पाया, अज भी मु मैसेज डिठा बट रहे ये हुआ था गर्मी जो मौसम हों तो गर्मी में प्रोडक्ट लगाने का तुम थोड़ो अवॉइड कर तो डिठो वे तो गर्मी जो जो सीजन हों न गर्मी में तुम्हारी स्किन के अना केयर की जरूरत होंगी है। सियारे में तो वैसे ठीक है तुम्हारी स्किन जी सही होंगी है, लेकिन गर्मी में तुम्हारी स्किन जी वह खराब थी वेंदी है, खराब थे चांसेस खोड़ सारा हों उस होंगी है, या फिर तुम्हारी स्किन से जो सही तुम सनस्क्रीन यूज कर नॉलेज न होंगी इन चीजों की, तुम्हें यह शय खबर होजन घुर्जी तो गर्मी में तुम्हारी स्किन के अना केयर की जरूरत होंगी है। तुम फेस वॉश करो था स्किन के क्लीन रखो था तो सुठी गाल है, तुम पानी जो इस्तेमाल जाम कर ऐसी लवली क्रीम यूज कर व्हाइट एज की लवली क्रीम आना ये तो बाबा गर्मियों जो सफाई तोड़ अव व्हाइट एज की लवली क्रीम जिनके अंदर टी वाइटामिन जी तुम्हारी स्किन की हर वाइटामिन के पूरा कदा इन सा गुड रोजाना तुम इस्तेमाल कर सो ये लाइट वेटेड फार्मूला है, जो तुम नॉर्मल कोई भी फेयरनेस क्रीम चाहो था तुम्हें सुठी फेयरनेस क्रीम ना ही मिली तुम व्हाइट एज की लवली क्रीम बिल्कुल लगाए सो था। व्हाइट एज की लवली क्रीम के अंदर जो सनस्क्रीन भी एड कई वही है, जो तुम्हारी स्किन की उस किरण का बचाई है, तुम्हारी स्किन हिफाजत भी कंदी आहे। तो इनके अंदर जी ना वाइटम्स मौजूद आए वाइटमिन्स जैमें बी थ्री आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन डी आहे, खोड़ सारा वाइटमिन्स आहे जेके तुम्हारी स्किन की हिफाजत कंदा, तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट कंदा, तुम्हारी स्किन के खूबसूरत भी बनाईंदा। तो व्हाइट एज की जी लवली क्रीम आए ना तुम सब लाजमी ट्राई करें, हमें का भी एज लिमिट ना है, तुम हर एज वो मानो इनके इस्तेमाल कर सो था। तुम स्कूल गर्ल आयो कोई भी वही जॉब कंदा आयो नंढी जॉब कंदा आयो कुछ भी लवली क्रीम आना वह तुम लाजमी अप्लाई कर सो था, लाजमी ट्राई कर सो था। तुम्हारी स्किन की जो ना ग्लो भी दींदी, खूबसूरती भी दींदी, तुम्हारी स्किन की हमेशा फ्रेश ग्लोइंग बनाए रखी। सो लाइट वेटेड फार्मूलो है, तुम इजीली वी सो था, बिल्कुल तुम्हारी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर तुम्हें मिली वो, तो तुम लास्ट में ट्राई करो तुम बुधाओ तुम रिजल्ट क्या मिलिया है। उन अगर पाँच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहो था तो तुम्हारे लिए नंबर है जनाब जो तुम लाजमी डायल कंदा, नंबर है 03157990595। जल्दी नंबर से राबो करो पाँच करीब अवेलेबल करायो इस्तेमाल कंदा वो व्हाइट एज का प्रोडक्ट जी तुम्हारे तैयार कया वाया है। ओके सो मुझे वहां का सवाल पूछो है, सवाल पूछो है बाबा, तो तुम मुझे बुधायो कदे तुम ओवर स्मार्ट बनजंदा आयो, यानी कि खोड़ मानो एड़ा होंदा जी ओवर स्मार्ट बनजंदा है, कई मरतबा पाँच ओवर स्मार्टनेस की वजह से वो फांसी भी पवंदा है किथे न किथे। तो तुम मुझे बुधायो कदे सा तुम सा यो सीन थियो है, अगर थियो है तो तुम केस में किए निकता आयो, तुम किए पाँची जान छदाई है, अगर तुम ओवर स्मार्ट थियण तुम डाढ़ो शौक है तो बाबा थोड़ा हथ हल्को रखो। उन अलावा गानों लिस्ट में मौजूद है, गानों बुधंदी तुम्हारे मैसेज तरफ अचूँ था, तुम चो वीडियो भी ऐसा हल्दी तुम्हारा कॉमेंट आज जो तुम मुझे फेसबुक से बुध पाया काइंडली पोस्ट के लाइक एंड शेयर ढो कंदा कर ठीक है घो कंदा शेयर कर खबर पे तो मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है जो तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी स्किन प्रोटेक्ट रहे।

मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई। वीरू मल मेंगवार हमारे साथ है, कहते वी वी आई पी शो मीरपुर खास से सुन रहा हूँ। थैंक यू जी वीरू मल भाई, आपको वेलकम करते हैं। सलीम रजा बिरोही हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ साथ जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। गुलाम कादर भट्टी वालेकुम अस्सलाम, कहते जी आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है। फ्राम मटियारी से प्लीज सॉन्ग आप कितने हसी हैं, चले मैं कोशिश करती हूँ ये वाला गाना हम लगाएंगे, ठीक है। और नूरिस एंटोनियो भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं शो, अच्छा कहते हैं शो बाज़ी नहीं करता हूँ, हमेशा नॉर्मल होता हूँ। चलिए ये भी अच्छी बात है। अच्छा

अलावा इकबाल आशारी भाई हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, वेलकम जी। हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, आइए मासूम नो चालाक ब्रो। ओके ओके किशोर भाई लिखते हैं कि प्यार में भीख मांगने का दर्द समझते हो और भीख में भी अगर वो प्यार ना मिले उसका दर्द समझते हो। बिल्कुल जी समझते हैं।

0: ओके जी, नसीम अहमद खोड़ो भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। नसीम भाई साला तांजो खुश आयो, और मुलाजिम भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम।
1: व्हाइट एज अगर आप ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं तो भैया,
0: और उसके अलावा नसीम भाई क्या कहते हैं, काफी टाइम खां पोए तवां के बुधण जो टाइम मिलियो, पर तवां जा तह के सागा ही आहे, बस जियो करे जीए ना। और कहते हैं स्क्रीन ते मायू त सफा भलियो आए ना। बिल्कुल जी। और कहते हैं मुस्कान अवल हिकड़ी हिकड़ी क्रीम जी डबी तू वठी दे, मां लगाए दसा, अगर सोनो थी वयस त बी डबी मां पाण वठंदस। अगर इंगी रहो त पो इलाही सारा लिसनर आइन जे मुखे वठी देणी पवंदी। एक दफो ता पाण वठो, अगर तमा के मजो अची हो त पो ताजी दिल चोंदी वराए बी वठो। सही आ। मां हिक के तो राजी न कदम न, मुझा सब लिसनर आए तो मां सोचांदी तो ता सब अवल पान वठो, तमा के मजो इंदो बाबा लगाए जदी तमा वाइटी सी क्रीम लगाईंदा ना, पो तमा के रिजल्ट मिलना, पो ता पानी चंदा पैसा वसूला बाबा।

फायसली लगाए गए। यासीन गुडारू हमारे साथ मौजूद इस सेकंड से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आमा बुदार की आयो व्हाइट एज एंटी स्किन प्रोडक्ट गर्मी में यूज करण सही आहे न सही बिल्कुल सही आहे बाबा बिल्कुल गर्मी में यूज करे सगो था तरी तां जला गर्मी में प्रोग्राम आंदो आए न गाल के समझ ना के दामन बचा सोने मुदे बेवफा। तो यासीन भाई तमाम बिल्कुल लगाए सगो था नो टेंशन सही आ। और फहा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह के सलामती शो नाइसा तांजो हमेरा चन्ना जो कोई भी गानो बुधराए जो हाजिर हाजिर ही हुकुम कयो। और मिरपुर खास का अब्दुल्ला महर कहते हैं बाजी अच्छा या वरी केड़ी गाला भला अच्छा इते पैनल थे केंजो ना खाली मैसेज मिलो है अगर न पढ़ा तांजो त समझी वंजो ठीक है। और रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबानी वालेकुम अस्सलाम फिलहाल तो यही है बुधो था सो तमा भा जरूर लगाए जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम न था आनो तो व्हाइट एज ही लवली क्रीम तो लाजमी लगा जो ठीक है जी तमाम भी लवली लवली थी वजह। और गोठ नबी दाद बंबरो नारो खा इमाम डनो बंबरो है तेरे प्रोग्राम जी अवां जी केड़ी तारीफ करिया बई लाजवाब हो अल्लाह जाई बुधा

बस साईं वाह, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो था न, ॿुधायो त साईं जीअं तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो आहे न, त बाबा करे वठो। अच्छा निदड़ी कहती कि टॉपिक नहीं, ओवर स्मार्ट नहीं बनती मैं, जो हूँ वैसी रहती हूँ मैं, सैड ही ठीक हूँ। अच्छा यानी तव्हां उदास रहण वारा माण्हू आहियो, उदास न रहंदा कयो एतिरो, उदास जेको न पंकज सिर्फ़ भलो लॻंदो आहे ॿिया। प्रेमचंद भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो। अहमद कहते हैं टॉपिक हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना, अगर फंस जाते हैं तो खुद निकल भी बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा यानी सुठो एक्सपीरियंस है तमाम जो माशाल्लाह। किशोर भाई अड़ी भविष्यवाणी तो न करो ना बाबा। तू समझो एक मिनट के लिए बेटा।

0: वाह साई वाह प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जनाब व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप कहीं से भी जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं कहीं से भी जाकर आप ले सकते हैं तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं अवेलेबल कराइए और वहां से इस्तेमाल करने के लिए परचेज कीजिए अगर आप नंबर चाहते हैं जो कि भाई आपको बताया जाए जिसके ऊपर आप रابطہ करें तो जनाब नंबर है 03-15-799-0595 नंबर डाल कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: इट्स 2 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
4: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
6: नमो जे फेलर हुंदियो सीनियर वजीर शहजी ने नामे में चवाद सिंधु हुकूमत कारोबारी बिरादरी एवाम के वडो रिलीफ नंदो आहे दुखिन वाशी हालतन में भी आवाम ए कारोबारी तबके जे मुफादन जो तहफुस कयो आहे
7: पीसीबी चेयरमैन मौसन नकवी भारत में थल आईसीसी मीटिंग में शिरकत की हुकूमत की मंजूरी से मजबूत कर छो मौसन नकवी नई दिल्ली में थल गर्जाणी की दावत मिलने की तस्दीक कन्दे चवाद वजीर आजम इजाजत डी तो गर्जाणी में शिरकत लाय भारत वेंदुस
6: कंडियारो में सिंध पब्लिक सर्विस में मेरिट की मुबैना लताड़ खिलाफ तालीमी तनकीदी फोरम के सद एहतजाज मुजाहरीन पारा हाईकोर्ट के गडियल चटाभेटी इम्तिहान का नतीजा मुअत्तल करने वाले फैसले की आज यहां करप्ट अमलदारन के हटाए एसपी एससी के खुद मुख्तियार इदारों बढ़ाने जो मुतालबो
7: ट्रिप बेयर शाह में उजड़ माइनर छे आबादगारन जो पानी कोड खिलाफ धरनो आबादगारन पारा लिंक रोड ते टायरन के बह डी धरनो खया वो आबादगारन है तो उजड़ माइनर में केतर साल पानी की फराहमी बंद है जमीनू बंजर थी रहा पानी पहुंचाए मसलो हल कया वे

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

इस्तेमाल कर सकता है। और जो मुझे मजे की बात लगती है वो ये कि भाई ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये ऑल स्किन टाइप वाले ही आप इस्तेमाल किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो हर स्किन के ऊपर जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको पता होना चाहिए आप लोगों को कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। और जो प्रोडक्ट आपके ऑल स्किन टाइप आपको रिजल्ट दे, स्किन टाइप के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल करेंगे, इजीली आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं, फर्स्ट कली नहीं मिल रहे, तो उसके लिए आप 03-1-5-7-9-0-5-1-5-7-9-0-5-9-5 ये नंबर जल्दी से डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कर परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन। फिर रहिए खूबसूरती का ख्याल रखा करिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। जेका उम्र आना हुआ अना वी लगंदी तवा उम्र का इलाही वा लगन है जी मानू पानो ख्याल ना रखना। सो पानो ख्याल रखो बाबा, हमेशा खूबसूरत दिखाई दे और हमेशा अपनी स्किन का अपना ख्याल रखते रहे, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं तो जाहिर सी बात ही हम पढ़ेंगे आप क्या कह रहे हैं वहाँ जी। बिल्कुल कॉमेंट्स भी हैं आपके, पैनल पर मैसेज भी हैं, आपकी कॉल्स भी हम लेंगे।

कुछ आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद जरा आप लोगों की कॉल्स की जाने बातें हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ मुझे मैसेज मिला है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, जो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। हमारी प्यारी लुबी हमें सुन रही है, लुबड़ी को वेलकम करती हूँ। उसके अलावा हमारे साथ हैं जी यहाँ पर अरीबा, कहती है प्यारी आपी जान जवाब है नो ओवर स्मार्ट में, और मेरी दिलबर दोस्त भाभी इरम, हम दोनों बचपन से नॉर्मल है। अच्छा, तो क्या वो एब नॉर्मल होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं? ये चीज समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों कह रहे हैं कि हम नॉर्मल है, क्या मतलब वो नॉर्मल नहीं होते? अरे भाई हाँ, वो सभी नॉर्मल होते हैं। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और इनम कहती है मेरी दोस्त ये आपको डेडिकेट जाता है गाना, मैंने बिल्कुल ही आपका गाना जो है ना वो सर्च किया तो मुझे यूट्यूब साहब ने बोला कि ये गाना हमारे पास नहीं है, या तो आप गाने का कोई मिस्रा मुझे लिखकर सेंड कर रही है, जिस वजह से ये आपकी जो लाइन्स है ना ये यूट्यूब साहब को जरा पसंद नहीं आई, तो आप जरा गाने का टाइटल लेके भेजा करें जिससे मुझे गाना ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा प्रिंस अहमद फ्राम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, कहते सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज रहमान मुगल हई रहमान मुगल रोज मुखावेसरी वने, तो मां कोशिश कंदम हलाईंदम तवाजो गानो। और गोट हाजी गुलाम खास के लिए झंडो मरी खां कुर्बान खास के लिए ससगढ़ मौजूद आए झंडो मरी वारो भाई अथव गोट मोहम्मद तैयब थे खां भी बोला थे बू कि तवाजो शो वेरी नाइस क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया कोन डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाजे करीब जनरल स्टोर से अवेलेबल आहे कोन इो तवा मुखे लाजमी बुधाई ना कर ओके जी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए, और जरा मुझे बताइए कि आपके एरिया में मिल रही है नहीं मिल रही, के अलावा नंबर जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर आप रब्ता किया करें। यहाँ पर प्रेमचंद भाई हमारे साथ है, प्रेमचंद भाई कहते हैं मुझे फायजा अली का गाना सुनाइएगा, फायजा अली जो गानो बिल्कुल तां के बुधराइंदा सी, दर्दे दिल कहती है कि हाय ना ना मैं ना मैं स्मार्ट हूँ ना ही मैं बनने की कोशिश करती हूँ, एक बार किया था उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सबक मिले मैंने नन्ना निदड़ी तवा डाढ़ा भला आयो। ये वीरू मल मेघवार भाई लिखते हैं सिदरा सिस्टर हनु लगायो हिकड़ी चीज न लगाईंदा कयो, तां साबुन भी लगायो तां क्रीम भी लगायो, छो त बई चीजूं अलग अलग आहिनि ऐं बई चीजूं तव्हां जी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहिनि, सो जेकी चीजूं तव्हां जे लाइ ज़रूरी आहिनि उहे सभु लगायो, ठीकु आहे। तव्हां साबुण बि लगायो तव्हां क्रीम बि लगायो भले तव्हां फेस वॉश बि लगायो, ऐं हा वाइट एसी लवली क्रीम त लाज़मी लगाइजो, समुझो था वाइट एसी क्रीम जेका आहे तव्हां फेयरनेस क्रीम जेका आहे उहा तव्हां ॾींहं जो लगायो, जेका ब्यूटी क्रीम आहे तव्हां राति जो लगायो, समुझो था। कदे कदे तला पान ते खिलाईंदी आहे मैडू ॻाल्हाईंदी आहियां इतना कोई कैसे बोल सकता है लेकिन मैं बोलती हूँ। आबिद हमारे साथ है, फेरोज अली बिरोही भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। ऐसे तव्हां गानो लिखियो आहे बिल्कुल तव्हांजो गानो हलाईंदासीं पर हिते हिकिड़ो मोट गानो आहे जेको फायज़ा अली जी आवाज़ में गानो आहे, त असां फायज़ा अली जो गानो ॿुधंदासीं उन खां पोइ वरी तव्हांजो गानो बि हलाईंदासीं, सही आहे। सो ही गानो डेडिकेट वेंदो अलाए कंहिं फरमाइश कयो विसरी वियो पर जिन जिन फायज़ा जे गाने जी फरमाइश

सिंपल और एंड सभी के डेडिकेट है बिल्कुल सी प्रोग्राम तुम्हारो पहुंचो है व्हाइट एज एंड दी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम्हारा लगायो था खूबसूरत यो पिया आई खूबसूरती के वेलकम चौक चौ पिया मानू खूबसूरत थे चाहन था वो सब इस्तेमाल कर दी स्किन ब्यूटी क्रीम आई व्हाइट एज प्रोडक्ट समझी वे

किशोर भाई बस ॾिसंदा वञो ॾिसंदा वञो. अच्छा एसन चादो चए वैसे क्रीम जी दॿी ते छोकिरे जो फोटू छो न आहे हूंदो. कुझु टाइम पहिरियां मूं बि इहा ॻाल्हि सोची हुई पर मूं थोरो ॾिठो त जेके काकनि वारियूं क्रीम हूंदा आहिनि काकनि जा फोटो हूंदा आहिनि. इट्स नॉट अ बिग डील समझो था. तारिक खान कहते हैं डी स्किन क्रीम व्हाइट एश आउट स्टैंडिंग रिजल्ट देती है. बिल्कुल जी तारिक खान आपने सही कहा है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर व्हाइट एश की प्रोडक्ट्स जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलता जा रहा है. तो बाकी जो लोग लगाना चाहते हैं वो भी जल्दी से लगाई ठीक है कहीं देर ना हो जाए. और नजीर सिंधी कहते हैं हाय हेलो आरजे सिद्रा जी आप कैसी हैं. सो इज वेरी वेरी नाइस. आई एम नजीर सिंधी फ्रॉम डहर की. चलें जी आपने सबको सलाम दिए हैं. सो वालेकुम अस्सलाम.

अच्छा मोहम्मद निरंजक रानी भाई जेकब आवासी मैं मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, सो तुम मौजूद है संजो प्रोग्राम बुधंदा रहा पूरे पूरे 3 बजे तक, ठीक है ना? 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है। सो आप हमारे साथ मौजूद रहिए और जरा इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे आसानी। तो आप परचेज करते जाइएगा और 7579905 ये नंबर डाल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर आसानी परचेज करते जाइए। टाइम हो जाता है जरा, हम न्यूज ब्रेक नहीं बल्कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिएगा और सुनते रहिए प्रोग्राम। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना bright ऐसे diamond।
4: हाँ, वहाँ जी skin

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे।
1: तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: सुबुह की चाहिए।

58 नेटवर्क हमारे साथ मौजूद है जनाब, यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि आप लोगों में जरा सी अवेयरनेस आ जाए, आप लोगों को पता चले कि भाईजान मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद है और आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल जनाब, व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, लेकिन अब जरा मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी जाहिर सी बात है ये ऑल स्किन टाइप के लिए, और सबसे बड़ी बात के जनाब ये डॉक्टर की तस्दीक शुदा होने वाले प्रोडक्ट है, इनको जो है ना देखभाल के तैयार किया गया। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये पाकिस्तान में थोड़े से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन प्रोडक्ट्स में से मौजूद है। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ये एहसास होगा कि आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही स्मूथ बनाएगा आपकी स्किन को, और साथ ही साथ इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ बात की जाए तो भाई आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, आपके चेहरे पर दाने हो या फिर एक्नी के निशानात हो ये चीजें भी खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर जो आंखों के नीचे ये हल्के आ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी और साथ साथ आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी और प्यारी प्यारी हो जाएगी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नाइट क्रीम है, रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का फेस वॉश भी मौजूद है। यस, डी स्किन का फेस वॉश भी है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरम इसके अंदर ऐड किया गया है और ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है। तो अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते कोई अच्छा, कोई मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, तो डी स्किन का फेस वॉश आप लोगों का इंतजार कर रहा है। तो अभी अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए डी स्किन का फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये दोनों चीजें यहाँ परचेज करेंगे, साथ में इस्तेमाल करेंगे, साथ में लगाएंगे और साथ साथ जो है ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। उसके अलावा अगर आप अभी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करेंगे जनाब 03 1579 0595, ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमाम प्रोडक्ट्स। अगर आप ये थोड़ा सा जो है ना वो जरा पूछ करें अपने आसपास जाके करीबी जनरल स्टोर्स पर कि कहाँ कहाँ पर ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल रहे तो आप नंबर के ऊपर रब्ता एक मरतबा जरूर कीजिएगा। और महर इरफान सियाल साहब का ये नंबर है, उनको बताइए कि भाई आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स और आप कहाँ से हमारा शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो वो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, या फिर आपको गाइड कर देंगे कि आपने कहाँ से जाकर परचेज करने हैं। बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो आप उनसे राबता करेंगे तो वो आपको इजीली सारी बातें समझा देंगे, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ जो है ना, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, और जब बनने की कोशिश की और आप फंस गए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, फिर उससे बाहर निकले हैं तो कैसे निकले हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई मरतबा कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, खास करके जब हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो वो जो मूवमेंट होता है ना वो बड़ा कैची टाइप होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि भाई इससे अगर हम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई शर्मिंदा भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते और कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। तो ओवर स्मार्ट पहली बात तो मत बना करें, और दूसरी बात बने तो जरा सोच समझ कर बने, सही है।

फिर जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सलाम टू माय स्वीट हार्ट मोम और सभी स्वीट सिस्टर्स को। टॉपिक ना नो कभी भी नहीं। वैसे फजीला की ये बात बड़ी अच्छी है कि आप लोग ये चीज भी नोट कर रहे होंगे कि फजीला जब भी मैसेज करती है तो उसमें एक ना दिन मेंशन करती है कि आज कौन सा दिन है। तो ये भी एक चीज है कि अगर समझ गए होंगे।

माना समझो तो मरण जो है जरूरी है मरण तो कें लाइ मरण प्यार आ दोस्त आ भी उनके मरण आए लेकिन यहाँ तो सही गाल ना है अल्लाह जो गाने के वाकई थोड़ी खिल ही मतलब लॉजिक ना है गाने सोचने की सलाह खत्म भी

हा बाबा माण्हू कूड़ ॻाल्हाईंदा वठनि था सो कंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन न कंदा कयो सही आहे और ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है अच्छा ज़हीर अब्बास भाउ तव्हांजो मोहबतूं तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया उन खां अलावा मीर पीर बख्श चालपुर हमारे साथ मौजूद है तव्हां असांजो प्रोग्राम 88 तां ॿुधो पिया सो मोहबतूं प्यारे भाउ जूं अच्छा एसन चलो इहो जेको आइडिया आहे न तव्हांजो इहो असां नेक्स्ट टाइम अप्लाई कंदासीं सही आहे फ़िलहाल जे लाइ त एतिरो ई अभी के लिए इतना ही अच्छा आदिल बिल्कुल आप गुड बॉय बन चुके हैं ऐसे ही गुड बॉय बने रहे बहुत अच्छी बात है हाँ तुम विणो तलामन गोला हमारे साथ मौजूद है जिला जेका बात है तुम्हारी मोहबतूं प्रोग्राम बुध पे और सबा खान हमारे साथ सबा खान वालेकुम असलम एसन जादू चे हाँ ये नचो वही तो जिन अची वो मान अगर टे चार ॾींहं सुकून हूंदो आहे न प्रोग्राम में पोइ वरी हिकु ॿिनि खे थोरो इंजन अची वेंदो आहे पोइ वरी थोरो माहौल ख़राब करण जी कोशिशि कंदा आहिनि पर बसि छा था चई सघूं

अच्छा ये हमारे साथ झुलरी का खालिक लाशारी कहते अदी झुलरी में क्रीम न पयो मिले, चलो झुलरी में असा तवां जला जल्दी अवेलेबल कराए वठंदासी। पर भा तवां हिकड़ो कम कजो, तवां के जको नंबर बुधाए थी ना हाणे उन नंबर ते तवां एको दफो राबतो कजो, उनन के चेजो त झुलरी में जका ना क्रीम नथी मिले त हु जी अवेलेबल कराए। उनन के चो त असा रेडियो बुधना, तांजो प्रोग्राम बुधनायो, वाईटी सी क्रीम ऐं डी स्किन जी क्रीम असा जी झुलरी गोठ में भी अवेलेबल करायो। सही आ, तो तवां डायल कना 03-15-799-0595-03-15-799-0595। ही नंबर तव्हां डायल कंदा, हिन नंबर ते तव्हां राबतो करण खां पोइ पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। हिन खां पोइ जेके बि प्रोडक्ट्स आहिनि, सभु प्रोडक्ट तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थींदा, हुतां पोइ तव्हां जेको आहे न वञी इज़ीली वठी सघो था। सही आहे।

बिल्कुल जी, असा कल भी होशियार हुआसी, असा आज भी होशियार आयो, इंशाल्लाह सुबाने भी होशियार हुंदा। हकीकत है उनका अलावा आदिल, आदिल बहुत शुक्रिया। और स्मार्टो गोपांग भी हमारे साथ मौजूद है जी, वेलकम वेलकम। और उनका अलावा हिदायतुल्लाह तवां जो भी मोहब्बतूं आइन प्रोग्राम बुधो पया असा जो ही एकड़ो सॉन्ग लगायो थम प्रोग्राम जो लास्ट ट्रैक आए समझो था। निदा कहती है जिया कहां घूमे इतने टाइम से, वो बोलो कभी यहां भी चक्कर लगाओ। वैसे जिया मसरूफ आला के थे।

हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको भी ले डूबेंगे। मंशा केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल और पिनके जो साफी जे सवाल के जवाब। मंशा केस में अदालती पेशे वक्त पिनके जो दाहूं मनपसंद बयान वठण जे लाए पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। अनमोल और पिनके चयो तो बेगुनाह आया, कुछ भी नाहे कयो, सब कुछ अगूणो मुड़ुस कराए रहियो आहे। बावीह जे पहिरीं लाहौर मां खयो वियो, 15 ॾींहं रखियो वियो, 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो। केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि। जंहिं फ्लैट मां गिरफ़्तारी ॾेखारी वई मुंहिंजो नाहे। अॻूणे मुड़ुस 3 महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई, निकाह रजिस्टर थियल न हुओ।

0: बंदशाह केस में गिरफ्तार कुकीन क्वीन अनमोल और पिंकी कराची ऐं मलीर जी अदालत में पेश। पुलिस जो अदालतनि खे जांच लाइ पिंकी जो वधीक रिमांड ॾियण जो इस्तदा। बासन नकवी चयो त मिस्री वफ़द जो दौरो बतरफ़ी सहकार जो नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो।
1: सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजी रिना महमूद चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे।
0: ॻोठ ख़ुश मोहम्मद पवर में ॻोठाणो रफ़ीक पवर क़तल थी पियो। ख़ान जी फायरिंग घर धियाणी मसमात मरियम खातो क़तल थी वई।

कंडियारो में सिंध पब्लिक सर्विस में मेरिट की मुबैना लताल खिलाफ़ तालीमी तनकीदी फोरम के सर ते एहतजाज। मुजाहिरीन पारा हाईकोर्ट के गडल चटाभेटी इम्तिहान जा नतीजा मुअत्तल करण वाले फैसले के आजियां करप्ट अमलदारन के हटाए एसपीएससी के खुदमुख्तियार इदारो बनाने जो मुतालबो।

0: ट्रिम मेयर शाह में उजण माइनर जे आबादगारन जो पाणी खोड़ खिलाफ धरणो आबादगारन पारा लिंक रोड ते तारन के बाहर डे धरणो हयो वियो। आबादगारन चयो त उजण माइनर में केतरन ही सालन खां पाणीअ जी फरहामी बंद आहे, ज़मीनूं बंजर थी रहियूं आहिनि, पाणी पहुचाए मसलो हल कयो वञे।
1: ठिकराट हुजे ॻोठ मुबारकपुर वासी चार पर बलोचिस्तान माघवाड़ा वारसन जो संदन बाज़ियाबी जे लाइ एहतजाज ॿुधाइन मूजिब नौजवान साहब अली, सिराज अली, नमीर खान ऐं मुराद अली खे नौशकी मां अगवा कयो वियो आहे। चाइनीज़
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मठियारी और मठियारी की आवाज़
2: GFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं उफ।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
2: रुपया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
4: जीए FM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: इफका सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल ना तुम जानो ना हम, पीर से जुमा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
6: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
5: जीए एफएम नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: इंटरव्यू में चयो आहे त पाकिस्तानी शख्सियतूं ईरान जे वेझो आहिनि। हुननि चयो असां वाइदो कराए सघूं था। अवां रुकजी सघो था। रोज़ाने डील करण बाद ॿ ॾींहं लॻंदो आहे त
1: में है हाई क्वालिटी पीसी 5 साल की वारंटी के साथ।
2: टॉप जिंदगी भर का।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमाजी शहर सखर में मेदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी और बादी बवासी जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहो आहे। रोजाना सुबह 9 बजे का शाम 5 बजे ताई जुम्मो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नजद पीएसओ पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर।

0: जी लाए 03112082600 0333714331।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: फादी मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: DAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
4: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
3: DHMS सिंध
4: RHMP इस्लामाबाद
3: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
4: माहिरे अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
3: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
4: कमर दर्द
3: अरकुन निसा
4: जोड़ों का दर्द
3: हेपेटाइटिस
4: वजन की कमी या ज्यादती
3: बे औलादी
4: गंजपन का मुकम्मल इलाज
3: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
4: टाइम
3: हफ्ते से जुमेरात
4: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
3: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
4: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
3: रब्ते के लिए
4: 03262200400।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जीए सखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम लीगल कॉर्नर साण करे आऊं आहियां अहां जो पंहिंजो मेज़बान बाबर शेख। इन उम्मीदुनि सां त अहां बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा। अला पाक अहां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे। सवन प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जेको अहां हर हफ़्ते ॿुधंदा आहियो, लीगल कॉर्नर प्रोग्राम में लीगल अवां के नॉलेज मिलंदी आहे तमाम घणी, ऐं असां सां गॾु स्टूडियोज में लीगल एक्सपर्ट मौजूद हूंदा आहिनि। सो लीगल एक्सपर्ट खे तव्हां बिल्कुल ॾिसी रहिया आहियो स्क्रीन ते। उन्हनि जो जेको आहे इंट्रोडक्शन कराइण खां पहिरियां तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो टॉपिक आहे सेक्शन 489 एफ पीपीसी, जंहिंमें चेक बाउंस ऐं उन ते कानूनी कार्रवाई कहिड़ी थी सघे थी। इन टॉपिक सां रेलिवेंट असीं अॼु गुफ़्तगू कंदासीं। इन टॉपिक सां रेलिवेंट तव्हांखे तमामु घणी अॼु नॉलेज मिलण वारी आहे। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त चेक बाउंस जॾहिं थिए पियो त उन में जॾहिं डिस

0: ऑर्गेनाइज्ड साबित थी वञे त उन ते जेको आहे त अंडर दिस सेक्शन टे सालनि ताईं उन्हनि खे जेल बि थी सघे थी ऐं इन सां गॾोगॾु फाइन बि उन ते थी सघे थी। हाणे कहिड़ी सिचुएशन में चेक बाउंस में जेको आहे त इहो सेक्शन अचे पियो ऐं उन ते तव्हां इहा कार्रवाई कीअं कराए सघो पिया ऐं फॉर इंस्टेंस तव्हां खां जेको आहे त चेक कंहिंखे मिली वञे पियो ऐं डिसऑनेस्टी साबित न पई थिए अॻिलो तव्हांखे जेको आहे त प्रेशर विझी रहियो आहे इलीगल तरीक़े सां तव्हां खां पेमेंट वठी रहियो आहे त उन मुतालिक़ सॼी अॼु जेको आहे नॉलेज तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजो कॉन्सेप्ट बि तक़रीबन क्लियर थी वेंदो। स्टूडियोज में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि, एडवोकेट हाई कोर्ट आहिनि ऐं ॾह सालनि खां वठी तक़रीबन एडवोकेसी सां वाबस्ता बि आहिनि, लेक्चरार आहिनि लॉ कॉलेज में एज़ वेल एज़ तमामु घणा हिननि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके आहिनि क्वालिफाई थियल आहिनि, यानी नॉलेज हिननि खे तमामु सुठी आहे लॉ जे मुतालिक़ जेका असांखे हर वीक असांखे ॾींदा आहिनि ऐं असांजी नॉलेज में यकीन इज़ाफ़ो कंदा आहिनि। सो शहबाज़ साहब अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियोस।
1: वालेकुम सलाम बाबर।
0: शहबाज़ साहब अॼु जो असांजो टॉपिक जीअं आहे चेक बाउंस, अक्सर तव्हांखे ख़बर आहे त चेक जंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे खणी उहो त ईअं पर्ची टाइप ॾेई छॾींदो आहे ऐं जॾहिं हिन सेक्शन खे जॾहिं हू ॾिसंदो ऐं उन ते ॾिसे पियो त सज़ा इहा कीअं थी सघे पई त मां सम्झा पियो चेक ॾियण खां पहिरां उहो ज़रूरु सोचींदो त यार चेक ॾियणु घुर्जे या न। सो सभ खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां हिन सेक्शन ते थोरो ओवरव्यू ॾियो त इन जी लीगल डेफिनेशन आहे छा।
1: सेक्शन 89F
0: जी
1: डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक जेके असां चवंदो चेक बाउंस बिफोर जंपिंग ग्रेवली इन टू दिस टॉपिक मां हिकिड़ो कुझु कॉन्सेप्ट आहिनि उहे क्लियर कंदुमि जेके असांजे ॿुधण वारा आहिनि ॾिसण वारा आहिनि त टे खां चार ॻाल्हियूं आहिनि जेकी असां हिते सम्झाइण लाज़मी आहिनि त हुन खां पोइ असांखे सम्झ में ईंदो त चेक बाउंस कहिड़ी सूरत में थी सघे थो। सभ खां पहिरियों जेको पॉइंट आहे चेक बाउंस खां अॻु में त असांखे इहा ख़बर हुजे त चेक ऑनर कीअं थींदो आहे ऐं चेक डिसऑनर
0: कीअं थींदो आहे।
1: चेक ऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की वेन अ चेक इज़ बींग प्रेज़ेंटेड बिफोर द बैंक एंड द बैंक रिसीव्स इट एंड देयर ओन विदड्रॉ द कैशिस टू द पर्सन टू होम द चेक इज़ बींग गिवन। ठीकु आहे त हिकिड़ो माण्हू वियो जेके चेक इशू थियो उहो बैंक वियो, बैंक हुनखे ऑनर ॾिनो, ठीकु आहे हुन जी तस्दीक कई, तस्दीक करण खां पोइ हुनखे जेको आहे न अमाउंट कढी ॾेई छॾियो। डिसऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की चेक जॾहिं ॾिनो वियो वेन द चेक वॉज़ गिवन ऐं चेक वॉज़ रीच टू द बैंक, बैंक मैनेजर या बैंक जो कोई बि अमलो जेको बि हुते वेठो आहे प्रेज़ेंट कैशियर आहे, सो ही विल सी फ्यू पॉइंट्स के अगरि उहे हुन लीगल पॉइंट्स अगरि लहनि था पिया त ठीकु आहे, अदरवाइज चेक विल बी डिसऑनर। जीअं मिसाल चेक डिसऑनर कहिड़ी सूरत में थींदो आहे त सभ खां पहिरियों इनसफिशियंट फंड हुजे, चेक में अल्टरेशन हुजे, त कॾहिं कॾहिं अल्टरेशन जो सीन इहो हूंदो आहे मक़सदु पर्पज़ इहो हूंदो आहे अल्टरेशन जो के अमाउंट हिकिड़ो लिखियलु आहे अमाउंट में कॾहिं असां ज़ीरो वधाए छॾंदाऊं, कॾहिं अघ खे चेंज करे छॾंदाऊं,
0: कॾहिं
1: करेक्शन थियल हूंदी आहे त हिन खे अल्टरेशन चवंदा आहिनि। ॿियो या त अकाउंट सीज़ त न आहे, टियों ट्रांसेक्शन टाइमली रुकी वई आहे या ट्रांसेक्शन रुकाई वई आहे, सो कुझु ॻाल्हियूं आहिनि उनखे ॾिसी करे चेक खे रिटर्न कयो वेंदो आहे, उन रिटर्न ऑफ चेक खे चवंदो आहे डिसऑनर ऑफ चेक। ऐं ॿियो इन खां अलावा हटी करे टे शयूं ॿियूं बि आहिनि जेके सम्झण लाज़मी आहिनि इन चेक वारे इशू में। सभ खां पहिरियों असांखे इहो ख़बर हुजे त ड्रावर केरु आहे, ड्रावी केरु आहे ऐं पे ई केरु आहे। तव्हां अगरि चेक खणी ॾिसंदो त हमेशह चेक जे मथो लिखियलु हूंदो आहे पे ई, उन जे अॻियां लिखियलु हूंदो आहे बीअरर। पे ई उहो माण्हू आहे जंहिंजे नाले ते चेक इज़ बींग इशूड, ठीकु आहे, जेको चेक विड्रॉ कराए सघे थो। ड्रावर उहो हूंदो आहे द वन द पर्सन हू इशूज़ द चेक, जेको चेक इशू कंदो फॉर द पर्पज़ ऑफ कोई बि ट्रांसेक्शन अगरि हुन कई आहे या हुन को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन हुन जी रहे थी पई या को प्रोमिस हुन कयो आहे या रीपेमेंट ऑफ लोन आहे, त उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक लिखी ॾींदो जेको पे ई वञी करे हुनखे विड्रॉ कराईंदो। हाणे किथे विड्रॉ कराईंदो हुनखे चइबो आहे ड्रावी। ड्रावी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे हुनखे अमूमन असां हुनखे बैंक चवंदा आहियूं, द प्लेस वेयर द चेक इज़ बींग ड्रॉ या फ्रॉम द पेमेंट इज़ बींग टेकन, उन के सा छा चवंदा
0: बैंक
1: ड्रॉ भी चवंदा ठीक है ये कॉन्सेप्ट मिलाए करे असा छा कंदा हूं ता यो कॉन्सेप्ट मिलाए करे ये सजे कॉन्सेप्ट असा चवंदा हूं यो चेक सा रिलेटेड आ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सा रिलेटेड आ अगर इन में बदनीयती अची वे उन जो मिसयूज थी वे उन कॉन्सेप्ट यो पूरा सेक्शन बीठल आ 489 डिसऑनेस्टली बदनीयती इं बाबत रिसेंटली हुकुम कोर्ट जी अथॉरिटी पढ़ा पे उन में टे इनग्रीडियंट्स इंपॉर्टेंट डिफाइन करण के लिए वाकई उन में चेक जो बाउंस हो।

0: अकाउंट बि माना ईअं सम्झो त चीटिंग में थो हलियो वञे, छो त डिसऑनेस्टी शामिल आहे.
1: यस,
0: डिसऑनेस्टली को माण्हू कंहिंखे फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक चेक हैंड ओवर करे छॾे, उन खां पोइ हे बि सेक्शन हुन जे मथां लागू थो थी वञे त उन जेको चेक ॾिनो आहे उहो बि डिसऑनेस्टी सां ॾिनो आहे. सो इन्हनि टिन्हनि सूरत में हिक न बल्कि टे सेक्शन जे मथां लागू था थियनि. चीटिंग जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे, फोर्जरी जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे, ऐं 489F जो सेक्शन बि लागू थो थी वञे. ऐं इन टिन्हनि में तव्हां हिकड़ी शइ कॉमन ॾिसंदो, दैट इज़ द डिसऑनेस्टली.
1: ओके,
0: डिसऑनेस्टी तव्हांखे टिन्हनि शयुनि में कॉमन नज़र ईंदी, जंहिंजो पर्पज़ यू आर टू चीट समवन.
1: 420K ऐं 489F K.
0: 480 असल में आहे त शइ डिफरेंट आहे. 420 आहे चीटिंग, डिसीव करण, कंहिंखे धोखो ॾियण. हिन में छा आहे त हिन में असां इंटेंशन ॾिसंदाऊं. चीटिंग में इंटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग खां धोखो ई आहे. अ पर्सन हू इंटेंशनली इंड्यूस समवन टू बिलीव दैट दैट थिंग इज़ अ ट्रू, हुनखे बिलीव थो कराए ऐं उन खां उहा शइ गेन थो करे. इनखे असां चवंदा आहियूं की इलीगल लॉस एन इलीगल गेन. इलीगल लॉस कंहिंजे लाइ आहे, जंहिंजी शइ आहे हुनखे त लॉस थी वियो. इलीगल गेन कंहिंजे लाइ आहे, जंहिंखां हुन उहा शइ इलीगली तरीक़े सां वापसि वञा इलीगल तरीक़े सां एडॉप्ट कई आहे, वरिती हुन खां गेन कई, हुन जे लाइ छा थींदो, इलीगल गेन. सो चीटिंग में डिसऑनेस्टी शुरू में ई इन्वॉल्व आहे, की हुन जो इंटेंशनली जेको इंसेप्शन खां जेको पर्पज़ आहे उहो चीटिंग ई आहे. ईअं ई अगरि तव्हां डिसऑनेस्टी में अचो था, हिते डिपेंड करे थो त चेक कहिड़ी ट्रांसेक्शन में, कहिड़े प्रोमिस में, कहिड़ी सूरत में, कहिड़ी ऑब्लीगेशन्स में ॾिनो वियो आहे. अगरि शुरू में बदनीयती नाहे, पेमेंट्स रवा आहे, पेमेंट्स ट्रांसेक्शन फ्रीक्वेंटली थींदी थी अचनि ऐं कुझु फाइनेंशियल इश्यूज़ जे करे उहो कंप्लीट न करे सघियो आहे, त असां हुनखे बदनीयती न चवंदासीं, छो की हुनजो हिकिड़ो सॉलिड रीज़न हूंदो. अगरि हुन जी शुरू खां ई वठी ट्रांसेक्शन रुकियल आहे ऐं शइ ट्रांसफर थी वई आहे, हाणे उहो चए थो उहो तव्हांखे शइ नथो ॾे, न उहा हुन एम्बिट में ईंदी, त हुन डिसऑनेस्टली सां इहा शइ तव्हांखे इशू कई आहे. हिन जो मां हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾियां. हिकड़ी तमामु बहितरीन मुंहिंजी फेवरेट हिकड़ी मूवी आहे, टॉम हैंग्स जी ऐं लिनाडो डिकैप्रियो जी हिकड़ी वॾी बहितरीन मूवी आहे, जेकी टोटली इन सिस्टम ते ठहियल आहे. हुन मूवी जो नालो आहे कैच मी इफ यू कैन.
1: ओके,
0: ऑस्कर में वई नॉमिनेटेड थी. त उन में सॼो जेको बैंकिंग सिस्टम आहे, की उन में फ्रॉडुलेंटली कोई इंसान फेक चेक जे थ्रू बिलीनियर थी सघे थो पियो, छो की 1960s में, अर्ली 70s में एॾी माना डिजिटलाइज़ेशन न हुई, त डॉक्यूमेंट्स to get so many transaction he becomes billionaire. Oh, na time zamane jo jo he became billionaire at that time. A real story dekhi wo saji related hi na checks hai.
1: Okay,
0: catch me if you can.
1: Okay, okay, okay.
0: So agar kekhe agar agar suppose movie samjhni hai, agar bag checks are related koi issue samjhna hai
1: ya movie dise,
0: to wo movie disi sake to unme sajo ahi forgery the.
1: Ta movie lover ghana hai, movies
0: ke liye. Listen, movies ma bhi asan ke inspirations milandi, movies ma bhi asan ke knowledge milandi hai. So agar movie suthi a, Oscar mein nominated a, story suthi a, to there is a chatan you can see if you are for your entertainment.
1: सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु थियण वारो आहे. असां ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं, पोइ मोटींदासीं ऐं सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं. ऐं सिक्योरिटी चेक खां अलावा वरी असां FIR ते ॻाल्हाईंदासीं, छाकाणि त FIR तव्हांखे ख़बर आहे सुथरी पाण वटि थींदी कोन्हे, त उन खां पहिरियां ई मामला जेके आहिनि उहे हल करणा पवंदा आहिनि. इहो बहितर आहे FIR ते प्रेशर ॾियण जे लाइ खणी, जीअं ADR थी सघे. सो इन टॉपिक ते वधीक असां ॻाल्हाईंदासीं, तव्हां बि पंहिंजो फीडबैक ॾेई सघंदव. असांजो नंबर आहे 03000113488. सो लीगल गवर्नमेंट प्रोग्राम में असां सां गॾु रहिजो.

0: एक और पहचान
1: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि उन लम्हात से फायदा उठाए।
3: अम्मा, ये तो मुझे छा मिला
4: पुत्र।

0: पाणी साफ न आहे तंहिंजे करे त असां बीमार था अचूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-45012। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
4: बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में दाखिला जो ऐलान साल 2026 लाए, दाखिलाऊं जारी आहिन मुख्तलिफ़ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कम इंटेलिजेंस ऐं फिज़िक्स, रियाज़ी ऐं शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तैक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी। उम्र की हद 35 साल। आखिरी तारीख 20 मई 2026 आहे। ऑनलाइन अप्लाई करियो www.apy.bnbwu.edu.pk।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज वाल करियो, मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो पिया, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहिड़ो शरबत जेको तव्हां खे दे ताज़गी, सुकून ऐं हक़ीक़ी राहत। दिल की धड़कन के मुतवाज़न रखण, गर्मीअ जे असर के घटाइण ऐं जिस्म खे तवानाई ॾियण लाइ शरबत रूहे राहत। रोज़ानो सिर्फ़ 1 गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां आज़ादी। क़ीमत सिर्फ़ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलण जो हंधु मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड फेज़ मोहम्मद रोड, गोश्त बाज़ार, ग़रीबाबाद, सखर। ख़मीस ऐं जुमो मिलण जो हंधु मदनी तिबी दवाखाना, मसाण रोड, नस लाला शहज़ादा चौक, रोहड़ी। राब्तो 0302-36-26-176।
6: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 का।

0: साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबी के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबी से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबी, रिश्ता भरोसे का।
2: अए अबाड़े जोड़न जे सूरत सफा मारे छजुआ।
3: अदात ने जो इलाज सुनो तो कराई,
2: इलाज कराए कराए थक जी पियोआ।
3: अदा इन सूरत जो इलाज खात्मा दर्द दवा सा मुमकिन आहे। जी हाँ, खात्माए दर्द एक अहिड़ी दवा जेका सूर खां दे निजात। सूर चाहे जोड़न जो हुजे, पठन जो हुजे, चेल जो हुजे या घिंटिया जो, कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कहीं भी नंढे वडे सूर जे लाए आज़मूदा दवा आहे। सतन बीहन जी दवा सिर्फ 450 रुपयन में। खात्माए दर्द मिलन जो हंध बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामो अल नूर दवा खाना रोहड़ी। राबते जे लाए 0305-580-0616।
4: नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
6: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
5: GAFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: सो वंस अगेन भली कहा लिसनर्स, प्रोग्राम लीगल कॉर्नर अवां ॿुधी रहिया आहियो। बाबर शेख आहे अवां सां गॾु ऐं प्रोग्राम में मूंसां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि एडवोकेट शहबाज हफ़ीज़ साहब। ऐं असांजो अॼु जो टॉपिक आहे 489F सेक्शन PPC डिसऑनर ऑफ चेक एंड इन ते कहिड़ी लीगल जेका हिते कार्रवाई थी सघे थी। शहबाज साहब, ब्रेक ते वञण खां पहिरां पाण हिन ते डिस्कस करे रहिया हुआसीं, मूं तव्हांखे चयो त सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। उन ई तरफ़ हलण खां पहिरां अवां हिन जो पर्पस ॿुधायो त वॉट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन।
1: हिन सेक्शन जो पर्पस पाकिस्तान पिनल कोड में एड करण जो इहो हुयो त जेकी बि बैंकिंग सां रिलेटेड जेके बि फ्रॉड आहिनि या चेक सां जेकी फोर्जरी आहे चेक जी, या जेकी बिज़नेस ट्रांसेक्शन थियनि थियूं बिटवीन द बायर एंड द सेलर या ट्रेडर्स एंड सेलर्स जे विच में, ऐं जेको बि मिसयूज़ थिए थो बैंकिंग सिस्टम में, उनखे रोकण जे लाइ इहो सेक्शन इन में एड कयो वियो, जीअं इन निज़ाम खे सुठो करे सघिजे ऐं जेको आहे न इन्हनि कार्रवाइनि खां बची सघिजे। मेन पर्पज़ हिन जो इहो।
0: अच्छा, मेन पर्पज। हाणे असां पाण अगरि सिक्योरिटी चेक ते कॾहिं कॾहिं थिए पियो, जॾहिं सिक्योरिटी चेक खे ॾिनो वञे पियो बग़ैर कोई लिख, मतिलबु चेक जे बैक साइड ॾांहुं त लिखणु घुर्जे त हीअ सिक्योरिटी बेस ते चेक ॾिनो वियो आहे, ऐं उहो डिसऑनर थिए पियो, उन ते जेको आहे त कीअं कार्रवाई थी सघे पई, या जंहिं सिक्योरिटी चेक ॾिनो आहे उहो जेको आहे त डिसऑनर थी सघे थो, उन ते FIR बि थी सघे थी या उन ते नथी थी सघे।
1: हाणे डिपेंड करे थो त एज़ अ सिक्योरिटी पर्पज़ ॾिनो वियो आहे चेक, छा उहा कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लीगेशन कम्पलीट थी आहे। अगरि जेकॾहिं कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लीगेशन कम्पलीट न थी आहे त सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ जेको ॾिनल चेक आहे उहो ऑटोमेटिकली डिसऑनर जी उन में ज़िमेरे में न ईंदो, एबिट में न ईंदो। अगरि ट्रांसेक्शन थी वई आहे, कम्युनिकेशन थी वई आहे, प्रोमिस जेके आहिनि प्रोमिस्ड जेके कंडीशन्स आहिनि उहे पूरी थी वयूं आहिनि एज़ पर कॉन्ट्रेक्ट, ऐं चेक इशू थियो आहे, भले चयो सिक्योरिटी पर्पज़ लाइ छो न इशू थियो हुजे, पर उन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे, त सभ खां पहिरियों उन में इहो ॾिठो वेंदो त कॉन्ट्रेक्ट जी जेको हिन लाइबिलिटी आहे उहा कंहिंजे मथो आहे, इशू कंहिं कयो आहे ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे। रिसेप्ट्स ॾिठियूं वेंदियूं, अगरि उन में उहे शयूं शामिल आहिनि त उहा डिसऑनेस्टी आहे, अगरि उन में उहे शामिल न आहिनि त ऑटोमेटिक जेको आहे उन में इहा डिसऑनेस्टी शामिल नथी थिए चेक बाउंस जी।
0: अच्छा, इन ते फीडबैक बि आयो आहे, उहो मां शामिल करण खां पहिरीं हिकिड़ो अवां सां पंहिंजो शेयर कंदो सवाल मुंहिंजे ज़हन में अचे पियो त अक्सर हिकु दफ़ा बल्कि कई दफ़ा ईअं थी चुको आहे त हिकिड़ो चेक जेको हूंदो आहे हिकिड़ी पार्टी जो कंहिंखे ॾिनल हूंदो आहे ऐं उहो फॉरवर्ड थींदो रहंदो आहे, उहो थर्ड पर्सन ते पहुतो, फोर्थ पर्सन ते पहुतो, उन जी पेमेंट क्लियर न थी, उहो वञी करे चेक जेको आहे त बाउंस कराए पियो ऐं चेक जंहिंजे नाले ते आहे उन ते बाउंस, उन जो डिसऑनर थी वियो, त छा उन ते FIR थींदी? हू त उन पार्टी खे सुञाणे ई कोन, चेक फॉरवर्ड थो थींदो रहे।
1: इहो ॾिसो न, मां तव्हांखे ॿुधायमि त चेक ॾियण खां अॻु में पहिरीं ॻाल्हि त कॾहिं बि ब्लैंक चेक ॾिजे ई न,
0: ठीकु आहे।
1: चेक में डेट
0: लिखी,
1: टाइटल लाज़मी आहे, कंहिंजे नाले ते वञे थो, बैंक जो नालो वञे थो। अगरि मिसाल तव्हां को कॉन्ट्रेक्ट क्रिएट था कयो पिया, उन कॉन्ट्रेक्ट में तव्हां लिखत वठो, कोई भी कॉन्ट्रेक्ट लिखत खां सवाइ त पूरो ई न आहे, अगरि न आहे त उनजा शायद ज़रूर तव्हां वटि हुजनि, उन में बैंक जो नालो हुजे, डेट ॾिनल हुजे, पर्पस ॾिनल हुजे, बैंक चेक जो नंबर ॾिनल हुजे, उन ऐं कहिड़े पर्पज़ लाइ इहो चेक ॾिनो थो वए, उहो बि उन में अवेलेबल हुजे। त उन खां पोइ अगरि कोई उनखे बाउंस कराए थो पियो, उन में पैसा सपोज़ कंहिं बि बैंक में वञी करे विड्रॉ कराए थो पियो, पे या विड्रॉ कराए थो, उन में सफिशियंट अमाउंट आहे या उहो अकाउंट सीज़ आहे या उन में चेक में अल्टरेशन थियल आहे, त डेफिनेटली को उन में बैंक जो मेमो लॻंदो। हाणे मेमो छा आहे? मेमो में सॼी इहो जेको मां तव्हांखे टर्म्स एंड कंडीशन ॿुधायो त उहो मेमो में उहे शयूं लिखी ॾींदा या उन में कढी करे उनखे ॾींदा त बाबा हिन में को अमाउंट ई न आहे, हे अकाउंट सीज़ आहे, या हिन में इनसफिशियंट अमाउंट आहे, या जेकी डेट आहे उहा बि जेके आहिनि, या हिन में जेकी सिग्नेचर थियल आहे उहा सिग्नेचर हुन सां मैच ई नथी करे पई ड्रावर सां जेको चेक इशू थो करे पियो, ठीकु आहे। उहे सॼियूं टर्म्स हिकिड़े रिटन सूरत में अवेलेबल करे उनखे ॾेई छॾंदा जेको पे ई आहे, उहो चाहे उनखे जेको आहे न एज अगरि उनमें डिसऑनेस्टी शामिल आहे त उन जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराए सघे थो। सिक्योरिटी पर्पज़ जे लाइ मां चयुमि समटाइम सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेकी चेक्स हूंदा आहिनि उहे बि डिसऑनेस्टी में शामिल थींदा आहिनि, अदरवाइज़ सिक्योरिटी पर्पज़ जा जेकी चेक्स हूंदा आहिनि उहे डिसऑनेस्टी में शामिल न थींदा
0: आहिनि। सो कुझु फीडबैक आहे, असां प्रोग्राम में शामिल कंदासीं, ही वॉइस नोट आहे, लेट्स सी कंहिं मोकिलियो आहे।
2: जीअं असीं तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियूं, मुंहिंजो नालो अब्दुल गफूर कलादी आहे ऐं मुंहिंजो तालुक गोटकी शहर सां आहे। सां हिकिड़ो सवाल हुयो तव्हां खां, छा सिक्योरिटी चेक ते सेक्शन 499F बि लागू थी सघे थो?
1: सिक्योरिटी अगरि चेक ॾिठो, अगरि चेक बाउंस थिए थो पियो या चेक डिसऑनर थिए थो पियो त हुनजी क्रिमिनल लाइबिलिटी कहिड़े पर्पज सां ऐं कहिड़ी ट्रांसेक्शन में जेको आहे ॾिनो वियो आहे, इशू कंहिं कयो आहे, अगरि उहे शामिल आहिनि त ठीकु आहे, अदरवाइज़ जेको आहे सिक्योरिटी पर्पज सां जेको रिलेटेड चेक आहे उहो जेको आहे एज़ अ डिसऑनर नथो थी सघे। उनमें इंटेंशन लाज़मी आहे डिसऑनेस्टी जो।
0: ऑल राइट, उमीद आहे तव्हांखे जवाब मिली चुको हूंदो। सो कॉलर जी तरफ़ हलूं था।
1: जी जी सर,
0: लेट्स सी केर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमेशा जेको आहे
1: इट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट सेक्शन।
0: बट ही कॉलर जेके आहिनि मूंसां ईअं कंदा आहिनि हमेशा, चवंदा आहिनि थोरो असां प्रोग्राम में मज़ो बि करायूं।
1: तव्हांजी क्रीम वॾी मशहूरु आहे।
0: सो अच्छा, हिकिड़ो वॉइस नोट ॿियो बि आहे प्रोग्राम में, मां शामिल कयां पियो ऐं अचो त ॿुधूं ही छा पिया चवनि।
3: वालेकुम, आई एम मोहम्मद मेहदी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी कंप्लेन दर्ज करवाने का

0: प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है?
1: ठीक है, आपका जवाब देते हैं असा प्रोसीजर की तरफ
0: अच्छा। जी, प्रोसीजर।
1: अच्छा शहबाज साहब, इन खां अलावा प्रोसीजर की तरफ अचण का पहिरां तव्हां समझो पिया काई शइ रहिजी वई आहे त असां उहा क्लियर करे देन असां प्रोसीजर की तरफ हलूं।
2: टॉपिक बज़ाहिर ई अगरि पी पी सी में ॾिठो वञे हिकिड़ो सेक्शन आहे, पर टॉपिक ॿिनि शयुनि ते डिवाइड थियल आहे। हिकिड़ो क्रिमिनल प्रोसीजर ते डिवाइड थियल आहे, ॿियो थियल आहे सिविल प्रोसीजर ते डिवाइड। सो आहे त टॉपिक वॾो, हाणे हुनखे जीअं चवंदा न समुझ खे कूज़े में कीअं। बहरहाल हिन जूं टे कंडीशन्स आहिनि, अगरि टिनि कंडीशन्स ते अगरि उहो कोई बि चेक बीहे थो त हुन में क्रिमिनल लाइबिलिटी लॻी थी वञे। जीअं मां तव्हांखे चयुमि, हू इशूड द चेक, वाट वॉज़ द पर्पज ऑफ इशूरेंस ऑफ चेक, ऐं फॉर विच थिंग इट वॉज़ इशूड, ऐं प्लस में देर वॉज़ एन इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी इंक्लूडेड। अगरि इहे टे शयूं आहिनि त चेक विल बी डिसऑनर।
1: प्रोसीजर चेक डिसऑनर थिए पियो ऐं एफ आई आर जे लाइ जेको आहे त थाणनि ते वञनि पिया माण्हू, त अव्हांखे ख़बर आहे त एफ आई आर त सुथरी थिए कोन पई पाण वटि। त उन खां पहिरियां जेको आहे त मामला सेट थी वञणु घुर्जनि या तव्हां रिकमेंड इहो कंदो त एफ आई आर ई कराइणु घुर्जे?
2: मां अॼु खां 6 महीना 7 महीना अगरि असां पोइ ते हलिया वञूं त पाण हिकिड़ो प्रोग्राम कयोसीं मिली करे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसिंग थीम आहे हिन वक़्तु जेको इहो हले थो पियो। त उन में मेजोरिटी ऑफ द केसिस अहिड़ा जेके सालनि खां पेंडिंग में पिया आहिनि ऐं हुन जो को हिकिड़ो कंक्लूजन नथो निकिरे। साल ब साल अगरि मिसाल को वालिद आहे उहो केस थो करे, त अगरि उहो मिसाल को ग्रांड पेरेंट आहे उहो केस करे थो त पुट था अचनि। पुट केस अगरि केस हलाईंदे हलाईंदे वीचारा फोत था थी वञनि त पोटा था अचनि। सो सालनि जा साल केस हलंदा रहंदा आहिनि, कंक्लूजन निकिरंदो पर वॾी टाइम ऐं पूरी माना हिकिड़ो लेंथी प्रोसेस थी वेंदो। उन लेंथी प्रोसेस खां बचण जे लाइ ऐं हद खां वधीक एक्सपेंसिव यूस करण खां बहितर आहे त अगरि इन प्रोसेस खे थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, जेके असां आर्बिट्रेशन ऐं मीडिएटेशन चवंदा आहियूं, हिन सिचुएशन में अगरि नेगोशिएबल जेके असां नेगोशिएशन्स, अगरि हिन सिचुएशन में अगरि कोई मिली करे कंहिंसां नेगोशिएशन करे छॾे, नेगोशिएशन्स चइबो आहे, सॉरी अगरि प्रोनाउंसिएशन थोरी घटि थी थिए, जेके असांजी लैंग्वेज त पहिरीं असांजी सिंधी आहे, ठीकु आहे न, त इन जे करे अगरि को वर्डन में अगरि थी वञे प्रोनाउंसिएशन त मां माज़रत कंदुमि ॿुधण वारनि खे, ठीकु आहे न, त असां हर ॾींहुं इंसान लर्नर आहे, सिखे थो पियो। सो नेगोशिएशन्स में वञी करे इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे, छोकी ॿ पार्टियूं वेही करे ईज़ीली इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे सघनि थियूं, अदरवाइज़ न कंदो त हुन में क्रिमिनल लिटिगेशन ऐं सिविल जेके आहे न लिटिगेशन ॿई हिन में इन्वॉल्व आहिनि।
1: अच्छा, हिकिड़ो कॉलर शामिल करे मां हिन सां रेलिवेंट तव्हां सां सवाल कंदुसि। अस्सलाम वालेकुम जी, केर था ॻाल्हायो था?
3: लकी गुलाम साहब।
1: ओके, सवाल मां को पुछण चाहींदो?
3: हा सर, असांजो हिकिड़ो केस आहे जेको हिन ज़मीन जा सनत आहे
1: जी,
3: हाणे असांजो कोरट मां नथो थिए, चए थो हुन में वञो, जेको आहे सिविल कोरट में वञो, इहो छा मसइलो थींदो?
2: मां थोरो
1: अच्छा थोरो रिपीट कयो, मसइलो छा सां ज़मीन सां रेलिवेंट आहे? ज़मीन जो आहे
3: सर, घर जी सनत आहे, हाणे उहा असां केस विधोसीं कोरट शिकारपुर में, हाणे उहो चए थो सिविल कोरट में वञो जज जो।
1: अच्छा, सिविल मैटर आहे जेको हिननि जेको आहे त
2: आई थिंक मूंखे इहो लॻे थो त हिननि अगरि ज़मीन जो मसलो आहे त 145 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इहो हूंदो आहे त हिकिड़ी असां मिसलिनियस एप्लीकेशन ॾींदऊं कंहिं बि हद जे मैजिस्ट्रेट वटि कि भई हिन प्रॉपर्टी ते जेको आहे न माना हीअं सम्झो त जान जो ख़तरो या जहिड़े जो ख़तरो या थी सघे थो किथे डेथ बि थी वञे, त उते इंटरवीन कयो ऐं प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट कयो। पर इन मामलनि में मैजिस्ट्रेट छा कंदो आहे, पुलिस खां रिपोर्ट घुराईंदो आहे ऐं ॾिसंदो आहे त अगरि जहिड़ो हद खां वधीक वधियल आहे त ॿिन्हिनि पार्टीज़ खे जेको आहे न घुराए करे मसले खे सॉर्ट आउट कराईंदो आहे। अदरवाइज़ इहे सिचुएशन्स काॾे हलिया वेंदा आहिनि सिविल हुन में, सिविल लिटिगेशन्स में। अगरि इंटाइटलमेंट सां इशू आहे, प्रॉपर्टी कंहिंजे नाले ते आहे, त डेफिनेटली उहो जेको इशू वेंदो उहो सिविल प्रोसीजर में हले वेंदो ऐं सिविल लिटिगेशन में वेंदो।
1: ठीकु आहे जी,
2: डिक्लेरेशन में हलिया वेंदा, हिन खे सिविल कोड में वञी करे डिक्लेरेशन घुरनि ऐं पार्टीशन जी डिमांड करनि।
1: ऑल राइट, सो हिकिड़ो वॉइस नोट आहे, प्रोग्राम में शामिल कंदुसि, लेट सी छा पिया चवनि।
4: सर, आउं फयाज़ अहमद खैरपुर खां अवां जो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहियां। सर, हिन टॉपिक जे हवाले सां मुंहिंजो हिकिड़ो सवाल आहे। अदालत में चेक बाउंस वारो केस आमतौर ते केतिरो वक़्तु हली सघे थो ऐं मुतासिर माण्हू खे कहिड़ो रिलीफ मिली सघे थो?
1: ठीक आहे, तव्हांजी महिरबानी अदा फयाज़, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया, तव्हांजो फीडबैक बि शामिल कंदासीं ऐं हिकिड़ो ॿियो वॉइस नोट आहे, इहो शामिल करे पाण खे प्रोग्राम कंक्लूड करणो आहे, 5 मिंट अची बचिया आहिनि। ठीकु आहे, सो ही छा पिया चवण अचो ॿुधूं पिया।
5: वेलकम, माय नेम

0: फ्रॉम खैरपुर मीरस मुझे सर शहबाज खां हिकिड़ो नंढो सवाल हुयो त अगरि कोई माण्हू असांखे चेक ॾे थो कंहिं बि डेट जो ठीकु आहे पोइ अगरि उन जे अकाउंट में उन वक़्तु पैसा न आहिनि त पोइ छा असां उन जे ख़िलाफ़ काई कानूनी कार्यवाही करे था सघूं
1: दादा थोरो सबुर कंजो यकदमि तकड़ा न थीजो
2: मां तव्हांखे उहो ई ॻाल्हि कई त इंटेंशन ॾिठो वेंदो अगरि ट्रांसेक्शन मुसलसिल हलंदी थी अचे त हुन में बदनीयती शामिल न आहे
1: अच्छा अक्सर इन सिचुएशन में ईअं थींदो आहे त चेक ॾींदड़ जेको आहे न अगरि हुनखे टाइम खपबो आहे त उहो फ्राइडे ते ॾेई छॾंदो आहे ठीकु आहे चवंदो आहे ॿ ॾींहं मूंखे मिली विया मंडे ते वञी करे हू कराए ऐं उनखे एॾो ख़्यालु हूंदो आहे जो फोन कंदो आहे यार हाली फ़िलहाल तव्हां बैंक न विझो मां पेमेंट क्लियर करायां विझरायां अमाउंट विझरायां देन तव्हां कजो पर कुझु माण्हू इलाही तकड़ा हूंदा आहिनि असां वञूं पिया
2: आई थिंक अफ़ज़ल सवाल कयां अफ़ज़ल जो बि इहो ई सवाल आहे
1: जी जी
2: त असां इंटेंशन ॾिसंदऊं
1: ओके
2: हुन में क्रिमिनल इंटेंशन या डिसऑनेस्टी जेकी आहे न अवेलेबल आहे या न आहे अगरि डिसऑनेस्टी शुरू खां ई आहे
1: जी जी
2: त उहो चेक जेको आहे न क्रिमिनल हुन में जुरिसडिक्शन में हले वेंदो अगरि डिसऑनेस्टी न आहे उहो सिविल लिटिगेशन में वेंदो अगरि सपोज़ हुन खां पोइ अमाउंट नथो ॾे पियो हाणे अमाउंट रिकवर करणो आहे त सूट फॉर असां रिकवरी में हलिया वेंदा या समरी सूट असां हुनखे चवंदो
1: मतिलबु 489F में जेको आहे त डिसऑनेस्टी अगरि साबित थिए पई त हीउ सेक्शन तहत
2: मां जी इनग्रीडियंट्स कुझु मिंट अॻु में जेके ॿुधाए उहे टई इनग्रीडियंट्स अवेलेबल हुन में आहिनि ऐं चेक डिसऑनर थिए थो विथ मेमो
1: ओके
2: त उन खां पोइ तव्हां जेको आहे न कहिड़े हुन में वञी सघो था छा चवंदा आहिनि या FIR में वञी सघो था अदरवाइज़ न त सिविल डिस्प्यूट सिविल जुरिसडिक्शन में वेंदा छो की अमाउंट ओतिरो ई रिकवर थींदो फाइन ऐं पनिशमेंट
1: पाणी ॿुधे पनिशमेंट केतिरी आहे सर अगरि मिसाल चेक बाउंस थिए पियो डिसऑनर कराए पिया वठनि ऐं डिसऑनेस्टी वाक़ई साबित थिए पई हिकु माण्हू आहे जेको टाइम वठण लाइ मुसलसल जेको आहे त लटाए रहियो आहे मां ज़ाहिर थिए पियो त हुनखे पेमेंट ॾियणी ई कोन्हे
2: FIR
1: थी वई त केतिरी हुनखे जेको आहे पनिशमेंट मिली सघे थी
2: हिनखे इस पर सेक्शन बाबति 3 साल लिखियल आहे ऐं फाइन लिखियल आहे ठीकु आहे उहा पनिशमेंट हुनजी एतिरी आहे ऐं प्लस में डिपेंड करे थो त केसिस 6 महीननि में बि हली सघनि था साल में बि हली सघनि था इन जो अल्टीमेट जेको कंक्लूजन आहे उहो पनिशमेंट ऐं फाइन ई आहे
1: ओके हलो ठीक है FIR थी वने थी त इहो छा बेलेबल आहे जेको एक्यूज़्ड पर्सन आहे उहो बेल कराए सघे थो
2: इहो बेलेबल इन सेंस में आहे त अमाउंट ॾिठो वेंदो मिसाल अगरि कंहिं 2-3 हज़ार जो 5 हज़ार जो 10 हज़ार जो अमाउंट उहो त माण्हू कहिड़े टाइम बि ॾेई सघे थो अगरि अमाउंट करोड़नि में आहे लखनि में आहे त उहो नॉन बेलेबल सेक्शन थी वेंदो हुन जे लाइ तव्हांखे वरी जेको बेल जे लाइ उहो बेल जी कुझु रिक्वायरमेंट्स आहिनि जीअं असां बेल ते बि पंहिंजो टॉपिक करे चुका आहियूं प्रीवियस बेल जी रिक्वायरमेंट छा आहिनि पोस्ट अरेस्ट बेल जी रिक्वायरमेंट छा आहिनि अगरि हुन रिक्वायरमेंट्स में अचे थो पियो त उहो हुन जी बेल थी सघे थी पई अदरवाइज़ अगरि अमाउंट इलाही वधीक आहे त उन अमाउंट खां पोइ डिपेंड करे थो त छा कंप्लेनेंट अक्यूज पर्सन जो मेलाफाइड ज़ाहिर करे सघियो या न करे सघियो अगरि मेलाफाइड ज़ाहिर करे वियो हुन जो एक्सरिया ऐं मेन्सरिया बि अगरि ज़ाहिर करे थो वञे प्रूव करे थो वञे त ऑटोमेटिक हुन जी बेल डिसमिस थी वेंदी अदरवाइज़ बेनिफिट ऑफ डाउट ते ऐं जेको आहे न हुनखे बेल जेको आहे न फर्दर इंक्वायरी ते हुनखे बेल मिली सघे थी पई
1: ठीकु आहे चलो FIR थी वई ठीकु आहे अक्यूज पर्सन खे जेल थी वई हाणे विक्टिम खे पैसा केरु ॾींदो
2: मां वन सेकेंड चवां कि क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पनिशमेंट ऐं सज़ा ई ॾींदो या फाइन इम्पोज कंदो पर जेकी अमाउंट आहे उहो अल्टीमेट जेको रिकवर थींदो उहो थींदो सूट फॉर रिकवरी या समरी सूट में त घुमी फिरी अगरि असां चऊं त असांखे अमाउंट मिलणो ई सिविल प्रोसीजर मां या सिविल लिटिगेशन सां मिलणो आहे क्रिमिनल में ज़रा पनिश कराए
1: पनिशमेंट मिलंदी आहे
2: पनिशमेंट कराए
1: त हिन ते असां सिविल ते जेको आहे त पोइ नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कशन कंदासीं
2: ज़रूरु अगरि इन इनशाला ईंदड़ टाइम में हिन ते असां हिन जे जेको आहे न समरी सूट ऐं हिन सां सिविल सां रिलेटेड इन जा इशूज़ आहिनि असां हुन ते ई डिस्कशन करे वठंदासीं
1: ठीकु आहे अच्छा इन नट शेल तव्हां असांजे व्यूअर्स खे कहिड़ी
2: सलाह इहा सलाह ॾींदुमि त अगरि तव्हां कोई बि चेक इशू कयो था पिया सभ खां पहिरियों त तव्हां उहो जेको प्रोमिस जेके कॉन्ट्रेक्ट आहे कॉन्ट्रेक्ट जे अंदरि जेके प्रोमिस्ड कंडीशन्स आहिनि प्रोमिस कंडीशन जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि असां टर्म्स ऐं कंडीशन सेट कयूं था हुनखे प्रोमिस चइबो आहे प्रोमिस कंडीशन तव्हांजूं क्लियर हुजनि चेक तव्हांजो जेको आहे न ब्लैंक्ड न हुजे चेक कहिड़े पर्पज़ सां ॾिनो वञे थो उहो हुन में शामिल हुजे डेट ऑफ चेक लॻल हुजे पेयर जो नालो लॻल हुजे ड्राइवर जो नालो हुजे बैंक जो नालो हुजे अमाउंट स्पेसिफाइड हुजे ऐं उहो बि कॉन्ट्रेक्ट ते लिखियलु हुजे ऐं कहिड़ी बैंक मां निकिरंदो उहो बि लिखियलु हुजे ऐं जेको टाइम आहे त केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम ते असां इहो जेको आहे न अमाउंट ॾेई छॾींदासीं ऐं केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम में हे जेको चेक आहे उहो तव्हां विड्रॉ या कैश करे सघो था पिया, उहो अवेलेबल हुजे ऐं उन में जो क्रॉस्ड थियल हुजे कॾहिं बि क्रॉस चेक, छोकी क्रॉस चेक छा थींदो आहे डायरेक्ट ई अकाउंट में हले, डायरेक्ट कैश न मिलंदो
1: आहे
2: न ॾियो। प्लस में कोशिश कयो त जेको आहे न चेक या त पेमेंट अगरि ॾियो त नेट कैश ॾेई छॾियो पर एज़ पर कॉन्ट्रेक्ट अल्टरेशन न हुजे, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे न कोई बि अगरि बैंक में वञे थो सभ खां पहिरियों तसदीक कराए त छा हे जेको मूंखे के चेक मिलियो आहे उहो चेक फेक त नाहे, उन में छा इहो अकाउंट सीज त नाहे, छा हे अकाउंट जेको आहे न जीअं हाणे ज़ुबैर हिकिड़ो सवाल कयो छा अकाउंट उहो फेक त नाहे, फोर्ज डॉक्यूमेंट या फोर्ज मूंखे चेक त न ॾिनो आहे, छो इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि इहे तव्हांखे नज़र में रखणियूं पवंदियूं कॉन्ट्रेक्ट रिटन खां अलावा। ऐं प्लस में हिकिड़ी एडिशन ॻाल्हि कयां, रिटन में बि अवेलेबल हुजे ऐं प्लस में शायदि ज़रूर हुन जा अवेलेबल हुजनि त इन फ्यूचर छा थी वञे तव्हांजी लिटिगेशन जो टाइम बची पवंदो।
1: कॉन्ट्रेक्ट लाज़मी करनि एग्रीमेंट जेके असां लिखत में हुजे
2: ज़रूर हुजे,
1: छाकाणि त सुभाणे परीहं छाकाणि त चेक अक्सर
2: ठीकु आहे कंहिंजे साम्हूं बि ॾियनि भले लिखत में न हुजे। ॾिसो न कॉन्ट्रेक्ट ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा हूंदा आहिनि कॉन्ट्रेक्ट एक्सप्रेस जेके वर्बल ऐं रिटन हूंदा आहिनि, ॿिया हूंदा आहिनि इम्प्लाइड जेके एक्शन कंडक्ट ऐं सर्कमस्टेंसिस ते हूंदा
1: आहिनि।
2: इन ॿिन्हिनि कॉन्ट्रेक्ट्स में हिकिड़ी शी कॉमन आहे छा, द प्रेज़ेंस ऑफ विटनेसिस। फाइनेंशियल इशूज़ में प्रेज़ेंस ऑफ विटनेसिस लाज़मी आहे, अदरवाइज़ तव्हां पंहिंजो केस पाण ई लूज़ करे वेंदो। क्रिमिनल में तव्हांखे पनिशमेंट जी पनिशमेंट मिलंदी, अमाउंट त न मिलंदो। सिविल में छा थींदो, तव्हांखे चांसिस आहिनि त तव्हांजो अमाउंट रिकवर थींदो या मामला सेटलमेंट ॾे हलिया वेंदा।
1: ऑल राइट शहबाज़ साहब, तव्हांजी महिरबानी,
2: मां चवां तव्हांजा टॉपिक तमामु आउटस्टैंडिंग हूंदा आहिनि, पर हूंदा बज़ाहिरी त नंढा लॻंदा आहिनि, हिकु लाइन जा लॻंदा आहिनि, पर हुनजी जेका डेप्थ ऐं गहराई में वेंदासीं त उहे ॾाढा वॾा हूंदा।
1: पर तव्हां माशाल्लाह अहिड़े सुठे तरीक़े सां असांखे
2: गहराई सां जेको आर्ट आहे उहो लेक्चर ॾियण सां असां ॿारनि खे पढ़ाईंदा आहियूं त असां सिर्फ़ इहो न सम्झायूं सम्झंदा आहियूं त सिर्फ़ पढ़ाइणो आहे।
1: जी जी
2: त इहो बि हूंदो आहे त अगरि 100 ॿार वेठो आहे 100 ॿारनि जो अलॻि अलॻि दिमाग़ कमु कंदो त उन नज़रिए सां अलॻि अलॻि तरीक़े सां इन टॉपिक खे असां ॾिसंदा आहियूं त काॾो बि सवाल थ्रो थी सघे थो ऐं कोई बि टॉपिक बाबर असां खां पुछी सघे थो, छोकी सवाल जे अंदरि सवाल
1: ठहंदो।
2: बुकिश लैंग्वेज ते बि इंसान केतिरो ॻाल्हाईंदो पर जेकी प्रैक्टिकल लाइफ आहे उहा इलाही वास्ट आहे, इलाही वॾी
1: आहे,
2: छोकी प्रैक्टिकल त थींदो रहे थो, एग्ज़ाम्पल्स असां वटि सेट थियल आहिनि। देट इज़ द रीज़न की मां जॾहिं बि ईंदो आहियां त मां सां मूंखे इहा हूंदी आहे त बाबर काॾो न कहिड़ो न कहिड़ो सवाल मूंखां पुछी
1: सघे।
2: एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, हर ॾींहुं असां सिखूं था पिया। जीअं मां चयुमि त हर इंसान जेको आहे न माना हर ॾींहुं सिखे थो पियो, सभिनि कुल इल्म त असां वटि बि न आहे, जेतिरो इल्म असां वटि आहे असां इम्पार्ट कयूं था पिया।
1: बिल्कुलु सो शहबाज़ साहब जी महिरबानी। व्यूवर्स तव्हां प्रोग्राम ॿुधियो लीगल कॉर्नर ऐं अॼु जो असांजो टॉपिक सेक्शन 489F PPC त इन मुतालिक शहबाज़ साहब बीइंग अ लॉयर 10 सालनि खां वठी हिनखे जेको एक्सपीरियंस आहे इन तव्हांखे इहा ई सजेशन ॾिनी त चेक ॾियण वक़्तु एहतियात लाज़मी कयो, कॉन्ट्रेक्ट ज़रूरु कयो, ईअं चेक कंहिंखे ॾींदव उहा डिसऑनेस्टी अगरि प्रूफ थी पई वञे त 3 सालनि ताईं जेल बि थी
2: सघे,
1: मिसयूज़
2: थी सघे थो।
1: इन जे लाइ कोशिशि कयो त चेक ॾियण खां पहिरियां इन्हनि शयुनि ते ज़रूरु अमल
2: कयो,
1: बेसिक इनग्रीडियंट्स ते ज़रूरु अमल कयो त जीअं उहो मिसयूज़ न थिए। सो वरी कंहिं नई टॉपिक सां गॾु अॻिले प्रोग्राम में अव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख ऐं असांजे महिमान एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त। इन्हनि सां एडवोकेट साहब सां तव्हांखे जेको आहे त को लीगल कंसल्टेशन घुर्जे या असांजे प्रोग्राम सां अव्हांखे को एडवर्टाइज़मेंट या प्रोग्राम सां रेलिवेंट तव्हांजो को फीडबैक हुजे उन जे लाइ असांजो नंबर आहे 03-000-11-34-88 ऐं शहबाज़ साहब अगरि पंहिंजो नंबर ॾियणु चाहिनि त लिसनर्स लाइ फ़ाइदो थींदो।
2: 03-08-12-44-306 मां रिपीट कंदुमि 03-08-12-44-306
1: ठीकु आहे त पंहिंजो ख़्यालु रखंदा सदाई गॾु। अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर।
2: थैंक यू वेरी मच।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिया मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में दाखिला जो ऐलान साल 2026 लाए दाखिलाऊं जारी आहिन मुख्तलिफ़ शोबन में बी एस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बी एस कंप्यूटर

0: केरो शौक हो ना तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो।
1: तू आज भी हसी,
0: थोड़ो पाए तो देखार।
2: ना मा, मा थकी पई आया।
0: न पुटा, ही थक ना है, रत जी कमी है। दिसता केडो ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो।
2: छा कया मा?
0: 6 महीना थी हुआ है पुटा, तू उम्मीद से आई। आई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी। कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट, तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से। उनन साई त खून ठांदो है, इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बार के। पुट हाने तू मां थण वाली आही, बहजो ख्याल रखण बियन खां पर अधिक जरूरी है।
1: मेरी बातें तेरे जिम्मे, अब ये तुझको निभानी है।
3: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो।
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
6: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
7: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
6: जीए FM नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।
6: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
7: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
6: जीए

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: चर पसंद देखिए अक्टूबर से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
4: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: शर पसंद देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुंदर जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सुंदर जो आवाज बुधंदा रहो।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
4: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: जीए FM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो।
3: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।
5: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
6: वादीए मेहरान।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

पाण खे ब्रांड सॾींदड़ कुकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जूं अदालती पेशे ते दाहूं। पुलिस ते तशदुद करण ऐं ज़बरदस्ती बयान ॾियण जो इल्ज़ाम। समूरी कार्रवाई जो ज़िमेवार अॻूणो मुड़ुस करार। अनमोल उर्फ पिंकी चयो त बेगुनाह आहियां, कुझु बि नाहे कयो, सभु कुझु अॻूणो मुड़ुस कराए रहियो आहे। 22 ॾींहं पहिरीं लाहौर मां खंबियो वियो, 15 ॾींहं रखण बाद 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो। केस बि कूड़ा आहिनि। AIG कराची जी सदारत हेठि पिंकी खां थींदड़ जांच बाबति इजलास अहम फैसलो।

सिंधवे पाणीअ जी शदीद खोट बावजूद पंजाब ज़ोरी खोलियल तकरारी केनाल मां पाणी खणत वधाए छॾी। पंजाब सीजे ऐं तोंडसा पंजनद लिंक केनाल मां 10,000 क्यूसिक पाणी खणण लॻो। शदीद पाणी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में पाणीअ जो बोहरान वधीक संगीन थी वियो। बिना इजाज़त पंजाब पारां खोलियल तकरारी लिंक केनाल जो कंहिं बि नोटिस न वरितो। सिंध जे आबादगारनि में घटती जी लहर छायल, सूबे में फसलनि जी पोखी मुतासिर थियण जो बि ख़दशो। सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शर्जील इलाम अहमद चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे। IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। FPR जो टैक्स अदब 15,260 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1,727 अरब ओकरण जो मनसूबो बि शामिल। सिंध में मुख़्तलिफ़ तकरारनि दौरान औरत समेत 4 ॼणा क़तल, 4 ॼणा ज़ख़्मी। काज़ी अहमद में कोकर ऐं कंबो बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में मसवाड़ वारी जाइदाद जहिड़ो थियो। मंज़ूर कंबो क़तल, ॿिनि औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि पारां लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणो क़तल। कोट कुश मोहम्मद पवर में घोटाणो रफ़ीक पवर क़तल थी वियो। कानपुर वेझो घर मां चोरी दौरान मुज़ामत ते हथियारबंदनि जी फायरिंग, घर ध्याणी मुसमात मरियम खातून क़तल थी वई। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। कोट कुश मोहम्मद पवर में रफ़ीक पवर खे लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो वियो।

सिंध जो हालत इंतहाई खराब है। भुख ए बदहाली सबब सिंध जो आवाम सख्त परेशान है। बदमनी चोट चढ़ियल है। कतल रोज जहा मामूल बनल है। हुकूमत आरामी है। सकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जस्कम चेयरमैन सलाम कुरैशी है सिंध में मनशा जो कारोबार सरेआम हली रो है। तालीमी इदारन में नियाणियों गैर महफूज आन। सुभा नवाबशाह में बदमनी लाकानूनियत खिलाफ धरणो हयो वो सिंध जो अमन बहाल किया वे।

हैदराबाद के सेरी वाले इलाके में बिजारी वाह वाह नारी जो तशद थे लाश है इतला रेस्क्यू टीम लाश अस्पताल मुंतकिल कर सुणप नती सके।

केस दाखिल कर भी दो। तकरार जो जेको दड़ी संदराणी में आबिद खान संदराणी जी सरपंची में थियो। बंगवार तुर ते चार खूनन जो 1,29,00,000 ए गुट्टा तुर ते 2 खूनन जो 1,08,00,000 रुपया दंड मुकरर। मुस्तकबिल में अगराई ते 2 करोड़ दंड जी फतवा।

डंडोलायार पुलिस जो बंबरे खूह वारे इलाइक़े में मनशियात फरोशन खिलाफ़ ऑपरेशन इलाइक़े वासियुनि जी मज़ामत छह अहलकार ज़ख़्मी पुलिस वीह गोठाणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो लखे रुपियनि जी मनशियात हथ करण जी दावा पुलिस चयो आहे त मनशियात ख़िलाफ़ ऑपरेशन दौरान मज़ामत जो बि केस दाख़िल कयो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
4: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जी ए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
5: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
4: जीए FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर।
1: सदवे पाणी की शदीद खोट बावजूद पंजाब जोरी खोल तकरारी केनाल्स में पानी खणत वधाए छदी। पंजाब सीजे तोनसा पंजनद लिंक केनाल्स में 10,000 क्यूसिक पानी खण लगो। शदीद पानी खोट के मुंह डीदड़ सिंध में पानी जो बोरान वधिक संगीन थी वो। बिना इजाजत पंजाब पारा खोल तकरारी लिंक केनाल्स के आबादगर में घटती की लहर छायल। सूबे में फसल की पोखी बचत लाए लॉकडाउन खत्म करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मौजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वजीर शर्जी जिला मेमन दुखिय माशी हालत में भी अवारी तबके के मुफादन जो तहफ़ुज़ कयो आहे। IMF बिजली ए गैस मांगी कर समेत नए माली साल जी बजट लाए 11 शर्त रखी छिया। FPR जो टैक्स अदब 15,260 अरब रूपया रखने की तजवीज दई छी। 215 अरब रूपये जा नवा टैक्स भी शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी जरिए भी अवाम का 1,727 अरब उगड़ने जो मनसूबो भी शामिल। सिंध में मुख्तलिफ तकरारन दौरान औरत समेत 4 जणा कतल। 4 जणा जख्मी। काजी अहमद में कोकर ए कंबो बिरादरी की बिन दूरियन में मसवाड़ वाली जायदाद जेड़ो थियो। मंजूर कंबो कतल। बिन औरतन समेत 4 जणा जख्मी। दोदापुर वेझो अणदातल जवाबदारन पारा लठियो ए कुहाड़ियो हणी 1 जणो कतल। कोटकुश मोहम्मद पवर में घोटाणो रफीक पवर कतल थी वियो। कानपुर वेझो घर में चोरी दौरान हुजामत ते हथियारबंदन की फायरिंग। घर त्याणी मुसमात मरियम खातून कतल थी वही। दोदापुर वेझो अणजातल जवाबदारन लठियों ए कुहाड़ियों हणी 1 जणे के कतल कर छोट। कोट खुश मोहम्मद पवर में रफीक पवर के लठियों ए कुहाड़ियों हणी कतल कर।

सिंध जो हालत इंतहाई खराब है। भुख ए बदहाल सबब सिंध जो आवाम सख्त परेशान है। बदमनी चोट चढ़ियल है। कतल रोज जहा मामूल बनल हुकूमत आरामी है। सकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी है सिंध में मनशियात जो कारोबार सरेआम हली रो है। तालीमी इदारत में न्याणियों गैर महफूज आन। सुबह नवाबशाह में बदमनी लाका

ईद-उल-अज़हा कॾहिं थींदी? फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। ज़ुल्ह जो चंड ॾिसण लाइ मर्कज़ी कमेटी जो इजलास सुभाणे कराची में तलब। कराची जे मौसमियात खाते में थींदड़ इजलास जी सदारत कमेटी चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद कंदो। सिपारको मूजिब सुभाणे ज़ुल्ह जे चंड जा इम्कान रोशन आहिनि। ईद-उल-अज़हा 27 मई।

हैदराबाद जे सेरी वारे इलाके में पिंजारी भाव मां नारी जो तशद थियल लाश आते इतलाते रेस्क्यू टीम लाश अस्पताल मुंतकिल कयो सुञाणप नथी सघे।

नगर पार्कर वेझो मुबैया तौर खूह जो जहरीलो पानी पीण सबब 30 का वधीक घोटाणा पेहोश मुतासिर जो मिठी समेत मुख्तलिफ अस्पताल में इलाज हलंदड़ घोट आंटड़ी में खूह जो जहरीलो पानी पीण

थाईलैंड में ट्रेन जो फाटक क्रॉस कर मुसाफिर बस के टक्कर, अठ मुसाफिर फोत हादसों, ट्रेन के गुजरण वक्त मुसाफिर बस पारा पटड़ी क्रॉस करण दौरान पेश आयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
4: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: दूसरी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुन जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सुन जो आवाज बुधंदा रहो।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: वादिए मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
4: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
4: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: सच।
1: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
4: फादिये मेहरान सिंध की।
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हमनसब से मुलाकात। वितर पर लागापा निकटे की सूरत हाल से गाल बोल ईरानी घर वजीर सिकंदर मोमनी अमरीका ईरान विच में जारी चिकताण दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशन के भी सारायो। बिन्हीं घरू वजीर जो सहकार जारी रखने वाले अतम जो वर्जाव तेहरान पहुंचने ते सिकंदर मोमनी मोहसिन नकवी जो आदर भाव कियो।
7: ईरान उन्हें दोस्त समझो पर विच ओभर के कुछ मुल्क सरजमीन ईरान ए फलस्तीन के दुश्मन हवाले कई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुहम्मद मुखबर है ईरान रद्द अमल में सब्र जो मुजाहरो कयो। सब्र सदा ही जारी न तो रही सके हालतू बरकरार रहो तो ईरान जो रद्द अमल सख्त हों। ईरानी सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी है अपने हुर्मुज़ बाबत नवा ज़ाब्ता तैयार कर छड़ा जिनके जल्द लागू कयो वेंदो।
6: यूरोपी मुल्कन आपदा हरमुस में यूरोपी बहरी जहाज की अचवन लाए ईरान से गाल शुरू कर छदी। ईरानी मीडिया मौजूद नए जापानी जहाजन के गुजरण पर मुल्क तेहरान से राबतो कयो आहे। यूरोपी मुल्क भी जहाज के
7: फिलहाल 28 आईनी तरमीम जा आसार नजर न अची रहा है। पार्लियामेंट मौजूद है इतिहादन से मुशावरत बाद ही कुछ थी सके तो। कानून वाले फाकी वजीर आजम नजीर तार है हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आइन तहत कम करण जो पाबंद हैं असांजी गजल हुकूमत।
6: यूरोपी मुल्कन आपदा हरमुस में
7: इतिहादन जी सिग्नल बाद ही मुशावरत के अगते बधाया वेंदो।

0: बची रहा है, पार्लियामेंट मौजूद है। कुछ भी ना है सब कुछ अगुण मुड़स कराए रो है पेरी लाहौर मां खाधो हो 15 ढी रखण बाद 5 ढी पेरी इत आंदो हो केस भी पूरा है। AIG कराची जिसकी का थीदड़ जांच बाबत इजलास अहम फैसला
1: KTN न्यूज
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।